0: सभी दिल्ली के नो फ्यूल का जो हमारा फार्मूला है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। उस अभियान को एक मिशन मोड में लागू किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली में सभी 500 एएनपीआर युक्त पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के खिलाफ भी सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अक्टूबर में इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और नंबर में पीयूसीसी केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह से नवंबर तक हम इन पीयूसीसी को भी बेटर अपग्रेड करना चाहते हैं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

कल जो एक घटना घटी, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

सभी दिल्ली के नो फ्यूल नो पीयूसीसी नो फ्यूल का जो हमारा फार्मूला है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। उस अभियान को एक मिशन मोड में लागू किया जाएगा जिसके लिए दिल्ली में सभी 500 एएनपीआर युक्त पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के खिलाफ भी सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अक्टूबर में इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और नंबर में पीयूसीसी केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह से नवंबर तक हम इन पीयूसीसी को भी बेटर अपग्रेड करना चाहते हैं।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

कल जो एक घटना घटी, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें।

0: कल जो एक घटना घटी, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं।
1: Bison Panel, one board, infinite users. म्यूचुअल फंड्स सही है, गिरनार एक चाय हो जाए, एक्सिस बैंक दिल से ओपन।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

सभी दिल्ली के नो फ्यूल नो पीयूसीसी नो फ्यूल का जो हमारा फार्मूला है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। उस अभियान को एक मिशन मोड में लागू किया जाएगा जिसके लिए दिल्ली में सभी 500 एएनपीआर युक्त पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के खिलाफ भी सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अक्टूबर में इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और नंबर में पीयूसीसी केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह से नवंबर तक हम इन पीयूसीसी को भी बेटर अपग्रेड करना चाहते हैं।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जंतर मंतर को सील कर रही है पुलिस, क्योंकि वो तो एक ऐसा प्रोटेस्ट साइट वेन्यू है जहां हम हमेशा ही देखते हैं कोई ना कोई इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे होते हैं, तो इस बार आपको क्या पुलिस बता रही है और क्यों मल्टीलेयर सिक्योरिटी वहां पे डिप्लॉयड है? हिमांशु, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है?
1: प्रोटेस्ट की कॉल किया गया था, yes. सिर्फ एक पार्टी की तरफ से नहीं था पूजा, ये आपका ही है। जी बिल्कुल पूजा, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां की तैयारियों को देख के समझा जा सकता है कि किस तरीके का प्रोटेस्ट कॉल था, और प्रोटेस्ट किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं था, बल्कि प्रोटेस्ट कॉल था कई विपक्षी पार्टियों को, और साथ ही साथ जो लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ। तो इसलिए पुलिस को आशंका थी कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं इस पूरी जगह पर। बीएनएसएस 163 लागू है, यानी एक साथ अगर कई लोग इकट्ठे होते हैं प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी की जा सकती है। ये पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था, परमिशन मिली नहीं थी प्रोटेस्ट के लिए। और इस पूरे इलाके में गनीमत ये थी पूजा कि आप ये जो देख रही हैं अशोक रोड है, इंडिया गेट से नई दिल्ली को जोड़ता है, बहुत बिजी रोड है, लेकिन गनीमत यह कि 2 अक्टूबर है, छुट्टी है इस वजह से, वरना इस पूरे नई दिल्ली इलाके में ट्रैफिक चौक हो जाता जो कंडीशन है आज की डेट में। और अलग अलग इलाकों से प्रोटेस्टर, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट यूनियन भी शामिल है लेफ्ट के, तो वो ये अचानक से पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, ये अशोक रोड है और पीछे जंतर मंतर का ग्राउंड जीरो है, वहां पर पहुंचने के लिए यहां आना पड़ेगा और यहां से ही आप जा सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर पुलिस ने कई सारी बसें खड़ी कर रखी, हमने सुबह से ही देखा था, जैसे ही कोई प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच रहा है, अगर लड़कियां आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, तो आप देखिए लेडी पुलिस यहां पर तैनात मिलेगी आपको, फौरन डिटेन किया जा रहा है, अलग अलग बसों में डिटेन किया जा रहा है, और उनको यहां से जो अब तक की जानकारी है पूजा उसके मुताबिक आउटर दिल्ली के कुछ स्थानों में शेल्टर बनाए गए थे जहां पर पहले से ही फिक्स किया गया था, और वहां पर भेज दिया जा रहा है। अब आगे का प्रोसेस ये होगा, आप देखिए यहां पर आप अगर देखेंगे तो बस के अंदर आपको प्रोटेस्टर जो थी, जो महिला यहां पर पहुंची हुई थी और लगातार यहां पर नारेबाजी थी, उनको यहां पर डिटेन किया गया है, बस के अंदर उनको पहुंचाया गया है। और इस तरीके से जो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, आप देखिए ये बस जब यहां हटेगी तो इसकी जगह पूजा दूसरी बस आ जाएगी, और इसके बाद उन्हें भी किसी को यहां पर रुकने, ये देखिए आप देखिए फ्रेम में दो लोग यहां पर पहुंचे, उनको तुरंत यहां पर डिटेन किया गया और डिटेन करके आगे बस में उनको तुरंत यहां पर भर दिया गया। कुछ देर पहले जब हमने बात की थी पूजा, तो जो डिटेनी थे उनकी संख्या 100 के पार पहुंच चुकी थी, तो अब आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, तो जो डिटेनी है उनकी संख्या बढ़ती, लगातार बढ़ती चली जा रही है। इन सब लोगों को आउटर दिल्ली ले जाया जा रहा है। आप देखिए ऐसे में क्या होता है कि जैसे कोई अगर शख्स इस तरफ से गुजर रहा है तो कभी कभी वो पकड़ा भी जाता है, गलतफहमी का भी शिकार हो जाता है, तो जैसे वो उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसने ये बताया कि वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने नहीं आया था। अब ये देखिए यहाँ की तैयारी, आपको तमाम यहाँ पर पुलिस के फोर्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आरएएफ, दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में नजर आएंगे। और ये आप देखिए, ये आप रोड देखिए, ये पूरी तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद है, और प्रोटेस्टर्स जो है कभी किसी तरफ से, कभी इस तरफ से पैदल, किसी दूसरी गाड़ी से, टू व्हीलर से आ रहे हैं, और जैसे ही वो यहाँ पहुंच रहे उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है। हालांकि आसपास के तमाम जो मेट्रो स्टेशन है उनके,
0: जी मुझे एक चीज बताइए कि ये एक तरह से सीजेपी ही है जो ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या सीजेपी के नेता आपको अभी दिखे हैं, वो कहाँ है, क्या वो कुछ कह रहे हैं इस बारे में?
1: देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है, अभी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हमें नजर आए, आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के लोग नजर आए, लेफ्ट के छात्र विंग के लोग नजर आए, और कुछ छात्र भी नजर आए जिन्हें डिटेन किया गया है। तो अभी सीजेपी का कोई नेता कम से कम इस जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूं पूजा, जो ये अशोक रोड का इलाका है, अशोक रोड है और ये सामने जंतर मंतर है, यहां पर नहीं पहुंचा है। हाँ, जो भी यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है, जैसे सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे उनके साथ उनके समर्थक थे, उनको यहां से पुलिस ने फौरन हटाया, इस जगह को क्लियर किया, और उसके तुरंत बाद जितने भी प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं उन सभी को डिटेन कर लिया जा रहा है। और अब जो आगे
0: मेरे साथ बने रहिए, बिकॉज आई जस्ट वांट टू गिव अ क्विक क्लैरिफिकेशन हियर। प्राइमरीली ऑफिशियली द सीजेपी हैज अनाउंस्ड इट्स प्रोटेस्ट फ्रॉम मुंबई दिस टाइम, सो यू विल सी लार्जली द सीजेपी लीडर्स एंड द प्रोटेस्ट इन सपोर्ट विद द सीजेपी एंड सॉलिडारिटी विद द सीजेपी एट इन मुंबई एट जंतर मंतर। While it appears to be a combined protest, there are different groups, even including the left-wing groups who have joined in. Opposition parties, like we've heard from the Aam Aadmi Party, leaders are there. Other opposition leaders are organizing this protest in Delhi. Over to you then, Himanshu. That means yahan par hum expect kar sakte hain ki ISA ke student members honge, NSOI ke student members, Aam Aadmi Party ke student wing ke log bhi ho sakte hain.
2: बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो स्टूडेंट विंग के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे, हाथों में उनके पोस्टर, बैनर, पंपलेट, तमाम चीजें थी जिसमें ज्ञानेश कुमार को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करो, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो, इस तरीके के नारे लिखे हुए पोस्टर बैनर लेके लगातार छात्र इस जगह पर जो अलग अलग स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो सुबह सबसे पहले इस जगह पर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने इस जगह की जो आप सिक्योरिटी देख रही हैं पूजा, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर आपको ये तमाम तैयारी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी रास्ता इस तरफ से आता है, चाहे आप अगर जनपद से अगर आप चाहे कि एंट्री ले लें तो वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहां भी इसी तरीके से बसें तैनात है, इतनी ही फोर्स वहां भी है, अगर कोई पहुंच रहा है तो डिटेन कर लिया जा रहा है। अगर आप संसद मार्ग से आते हैं तो संसद मार्ग से को तो सीपी से ही बंद कर दिया गया, आउटर सर्किल सीपी से या फिर अशोक रोड से जो संसद मार्ग का रास्ता आगे की तरफ जाता है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी यहाँ पहुंचने का कोई आम रास्ता अब ऐसे गाड़ी से पहुंचा नहीं जा सकता है। हाँ, जो लोग पैदल प्रोटेस्ट करते हुए पहुंच रहे हैं उन सबको डिटेन कर लिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर में डीसीपी जो इलाके के हैं वो नजर आएंगे जो अपनी टीम को ब्रीफ कर रहे हैं, साथ में जो कुछ और डीसीपी दिल्ली पुलिस के हैं वो यहाँ पर है जो पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट साइट पर। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और चूंकि कोई भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर रुके नहीं, ज्यादा देर यहाँ पर रुकने ना पाए, इस ये पूरी है ताकि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो मेंटेन रहे। इसलिए तमाम जो पूरा इलाका है वहां पर आपको पुलिस और जो बाकी लोग नजर आ रहे हैं, ज्यादातर उनमें मीडिया कर्मी है वो नजर आ रहे हैं। पुलिस में आपको अलग अलग विंग, जैसे देखिए मेरे आसपास आपको इस वक्त सीआईएसएफ के जवान जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सीआईएसएफ कर्मी है। वो सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी प्रोटेस्ट साइट है या जो भी जंतर मंतर आने का रास्ता
0: है, कीप ट्रैकिंग द डिटेल्स, सो वी विल सी हाउ दिस गोज। इफ द ऑपोजिशन लीडर्स आर गोइंग टू कम एंड इंश्योर अ धरना डिस्पाइट द पुलिस सेइंग नो परमिशन हैज बीन सॉट, व्हाइल मुंबई इज आल्सो विटनेसिंग प्रोटेस्ट दैट्स स्पेशली फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड बाय द सीजेपी। Stay on with me, Himanshu, because it's Delhi that's witnessing a massive showdown, and when a protest like this takes place in areas like Jantar Mantar, like we are witnessing, that also means that metro stations face a certain logjam. There is a halt when it comes to vehicular traffic. For now, several Aam Aadmi Party workers who tried to stage a protest were detained by the police. Prohibitory orders have been placed already. It's the site where earlier also, remember, the protest took place. For now, it's been sealed by the police. You can see barricades there have been placed. Delhi police and other security forces have fortified the Election Commission office as well and Jantar Mantar in view of the protest. The Election Commission and Jantar Mantar are in the same vicinity and therefore they are looking at ensuring that the security of the EC is also in place. Opposition parties have called this protest at the Jantar Mantar against Gyanesh Kumar, the Chief Election Commissioner. Entry and exit points at 11 metro stations, including Mandi House, Central Secretariat and Rajiv Chowk, have been shut. Opposition has placed several demands, including Gyanesh Kumar's resignation, suspension of SIR, restoration of deleted voters, a probe into the lapses and transparency in the election data.
3: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर के सीजेपी आज देश भर के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है और ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट का कॉल जो है वो किया गया है, लेकिन सुरक्षा के कारणों के चलते दिल्ली मेट्रो स्टेशन के तकरीबन 11 गेट्स जो हैं वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। ये वो गेट हैं जो कि जंतर मंतर की तरफ जाते हैं, जिसमें अगर बात की जाए राजीव चौक, मंडी हाउस, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जनपद, ये तमाम वो मेट्रो स्टेशन हैं जिनके गेट जो है वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इसके अंदर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेवा तीर्थ, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम, न्यू दिल्ली, पटेल चौक, ये तमाम वो 11 मेट्रो स्टेशन है जो फिलहाल आज बंद रहेंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रोटेस्ट की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। जंतर मंतर जाने वाले तमाम जो गेट हैं वो फिलहाल जो है वो बंद किए गए हैं मेट्रो के लिए, और जो लोग सुबह अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकल रहे थे खासतौर पर उनको खासी परेशानी का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कई सारे जो पैसेंजर्स हैं जो कि मेट्रो से सफर करते हैं उनको भी परेशानी जो है वो हो रही है क्योंकि मेट्रो स्टेशन के गेट जो है वो बंद हैं।
0: So this is the SIR battle that is back on the streets again. The CJP stepping up protest against Election Commission and CEC Gyanesh Kumar. They've announced an agitation in Mumbai. And this is while an agitation in Jantar Mantar in Delhi also is being organized. Despite denying permission to organize a protest at Shivaji Park, CJP Chief Abhijit Dibke announced they will hold the protest as planned. Mumbai police, like Delhi, have put up barricades and are ensuring heavy police deployment at and inside Shivaji Park. Now, the CJP has three demands. Gyanesh Kumar's resignation, freezing the 2025 electoral list, greater transparency in the appointment of the CEC. Abhijit Dibke says the protests will continue across India until the CEC resigns and insists that they will go ahead even without permission. Mumbai police has denied permission for the protests, just like Delhi, and where Delhi police is saying that permission wasn't even sought. In Mumbai, they are citing rules governing public gathering and traffic concerns. But the CJP is clearly escalating the stir. India Bloc is also launching the Save Democracy Week today. District-level demonstrations against the Election Commission are starting across the country. So then what is the government up to? The NDA, meanwhile, is simultaneously hitting back and doubling down, questioning the CJP's intention, accusing it of defending what it calls were fake voters being defended by the CJP.
4: मुंबई के शिवाजी पार्क में आज सीजेपी का प्रोटेस्ट होना है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने काफी एहतियातन कदम उठाए हैं। उन्हीं में से एक है कि ये बैरिकेड आप देख सकते हैं जो शिवाजी पार्क ग्राउंड है, जहां पर कई राजनीतिक रैलियां होती हैं, कई सभाएं होती हैं, इस ग्राउंड के जितने भी एग्जिट्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि ज्यादा भीड़ जब शाम को प्रोटेस्ट हो तब ग्राउंड में ना जा पाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रखी जाए। साथ ही मुंबई पुलिस यहां पर बड़ी तादाद में मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस यहां पर आप देख सकते हैं अभी से तैनात है। शाम को कई रूट्स के यहां पर डाइवर्जन देखने को मिलेंगे, जिसके एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस द्वारा बहुत ही जल्द जारी की जा सकती है। सीजेपी का प्रोटेस्ट यहां पर होना है और जो उनके प्रोटेस्टर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। साथ ही कई स्टूडेंट्स फोरम हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए जो है सीजेपी ऐसे बैनर्स जो है वो शिवाजी पार्क में जगह जगह पर लगा रही है, जिसको स्कैन करके उनकी पार्टी सीजेपी को ज्वाइन किया जा सकता है। और कई जगहों पर ऐसे बैनर्स जो हैं यहां पर वो लगाए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस द्वारा अब तक जो परमिशन है वो नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर होगा और ये प्रोटेस्ट की एक तरीके से शुरुआत होगी। इसके बाद ये प्रोटेस्ट देश के अन्य राज्यों में जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर और अपनी अन्य मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें अभिजीत दिबके जो सीजेपी के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो खुद इसमें शामिल होंगे और उनके साथ हजारों की तादाद में सीजेपी समर्थक जो हैं वो यहां पर शाम को प्रोटेस्ट करेंगे। प्रणय जी, पहली बात तो शाम को यहां पर आपका प्रोटेस्ट होगा, लेकिन परमिशन आपको नहीं दी गई, आपने परमिशन मांगी थी, पुलिस से कुछ बातचीत हुई आपकी?
5: देखो, पिछले जुलाई के महीने में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे भारत के नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया था, जेंजीज और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, क्या तब परमिशन मांगी गई थी? और मुझे परमिशन के बारे में बात करना हो तो यहाँ पे पॉलिटिकल रैलीज होती है, उसको कैसे परमिशन मिलती है? और जो हम कर रहे हैं, हम हमारी हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इट्स दैट डिफिकल्ट।
4: सीजेपी की तरफ से किस तरीके से आयोजन होगा, कितने लोग आने की उम्मीद है?
5: देखिए, संख्या तो बहुत बड़ी है, भारत भर से लोग आएंगे और हमारे पास वॉलंटियर्स है जो क्राउड मैनेजमेंट में रहेंगे, एंट्री पॉइंट्स में रहेंगे और मुंबई पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, मुंबई पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है और उस माध्यम से हम ये पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल कंडक्ट करेंगे।
4: प्रोटेस्ट का समय क्या होगा और किस तरीके से होगा, क्या एक ही जगह पे होगा या फिर यहाँ से मार्च करेंगे, आगे का किस तरीके से शेड्यूल होगा?
6: शाम को 4 बजे से 8 बजे तक का प्रोटेस्ट का टाइम रहेगा और आगे कुछ नहीं रहेगा, उधर ही हम समाप्त करेंगे। हमारा उतना
4: कितने कितनी तादाद में लोग आने की उम्मीद है?
6: लोग तो हम अखड़ा सुन रहे हैं कि 1 लाख तक लोग आ सकते हैं, लाखों में संख्या में लोग आ सकते हैं, और उनकी पूरी तैयारी हम सीजीपी ने पूरे वॉलेंटियर टीम है हमारा, हम पुलिस को पूरी सहायता से काम कर रहे हैं।
4: और जो सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं, क्या उनसे कुछ आपको अपील की गई है आपके द्वारा, है उनके उनसे कुछ कहा गया है?
6: नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं।
7: ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का इस सीजीपी के इस आंदोलन में समर्थन है, समर्थन के साथ वो पूरी तरीके से आज यहाँ पे सहभाग लेने वाले हैं। और महाराष्ट्र मुंबई के जो आजू बाजू के जिले हैं वहां से 1000 से 1200 स्टूडेंट्स आज शिवाजी पार्क कूच करने वाले हैं। और ये एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो जो शेड्यूल 6 में उन्होंने चेंज किया है, जिसकी वजह से नया इनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब जेंजी के वोटर्स नहीं जा रहे, मतलब ये सरकार जेंजी से डर चुकी है। लेकिन हम लोग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए आज यहाँ पे आए हैं, और हम लोग सिर्फ इस्तीफा नहीं, हम लोग अरेस्ट मांग करने वाले हैं। उसके लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पूरी तरीके से इस आंदोलन में सहभाग होने वाला है।
4: लेकिन पुलिस परमिशन नहीं मिली है अब तक इस प्रोटेस्ट को?
7: मुझे ऐसा लगता है कि संविधान ने हमें परमिशन दी चुकी है, भारत का संविधान ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। बस पुलिस को इंटीमेट किया गया है, अभी पुलिस ने उनकी तरफ से वहां पे पूरा हम देख सकते हैं कि फौज फाटा उन्होंने लगा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस इस आंदोलन को करने के लिए सहकार्य करेंगी, मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद तो है कि दिल्ली की तरह बर्ताव नहीं रहेगा मुंबई पुलिस का।
8: By the Prime Minister and the Home Minister. Am I right? So they have the rights to sack him, and they should better sack him, because if they don't sack Ganesh Kumar, the anger against Ganesh Kumar would turn towards the Prime Minister and the Home Minister. And I don't understand why the immunity has been given to him. Why? Why is that necessary? Is he above the Constitution of India? Is he above ordinary citizens? Is he some God figure?
9: बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, देश का युवा, मुंबई का जो युवा है उसने जंतर मंतर 1.0 जब चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा था, तब भी क्या जज्बा दिखाया था, तो इससे हमने सोचा कि मुंबई फिर से हम लोग आते हैं, एंड इस बार मुंबई से, मुंबई के स्पिरिट से हम लोग शुरू करेंगे ये, मुंबई का युवा और आसपास।
0: It's a big news coming in. Prime Minister Narendra Modi has spoken to India's brave pilot, Captain Smith Machar, right now. Just a short while back, and I can give you this confirmation here on India Today, Prime Minister Narendra Modi speaking directly to Captain Smith Machar, who's undergoing treatment and is recovering well. He's presently, according to our information, in the United Arab Emirates. Captain Smith gave details of his experience and basically what gave him the courage during the incident and when he was being attacked. Maria Shakil joins me for the latest on that. Maria, that's a special moment that Prime Minister Modi called him up directly, had a conversation. What are you picking up about what was really part of that talk?
10: So the Prime Minister has been in touch with the family. He has also, gave details time to time over the last 24 hours of the role that has been played by the Indian missions. The fact that the captain, after his condition stabilized, moved out of Saudi Arabia to Abu Dhabi, all those news has been coming repeatedly. Now, what sources in the Prime Minister's office are telling us is that the Prime Minister had a detailed conversation with Captain Smith, in which Captain Smith gave details of what really played out in the cockpit in those moments, I would say, because it was all about those split seconds when, a tragedy, a near catastrophe was prevented. And Prime Minister Modi getting details and also communicating to the pilot that how the entire country stands with him and his family. Remember, only yesterday we have seen Prime Minister say that an Indian had prevented a 9/11 kind of a tragedy, and how there has been repeated emphasis on the fact that the role that has been played by Captain Smith is exemplary. It is something that has to be lauded. It is something which is heroic in all possible ways. And hence, the world is talking about it. The Prime Minister of Israel said that an Indian saved lives of 174 people. And now, the fact that he was the captain of the flight, he was the one leading this flight, and mid-air, this entire incident happened.
0: Mara, how is the Indian government progressing with it? I understand that we are not directly involved in the situation in any way, but one, we had a pilot of Indian nationality, and the manner in which the West Asia conflict has emerged as well. Is there anything that the Indian government is doing right now, participating in the investigation, or has said they're willing to be a part of it? If you can help us understand that better.
10: No, so at the moment, the Indian government's role has nothing to do with the investigation so far. The multi-nation probe, which is currently underway, has UAE, Saudi Arabia, and Mossad of Israel.
0: Yes.
10: They are involved in the investigation. This is, of course, a big aviation crisis which has unfolded, and it could have triggered multiple chain reactions. But the role of Captain Smith is something that is being, praised worldwide, including President Donald Trump, who himself did so.
0: Tell us more about that, Maria. That's a very interesting point you're making, that even U.S. President mentioned him. Do you think that the fact that this Indian pilot managed to face what he did, ensure that the plane did not crash, that it is also being seen as representative of the country as much of the individual? People are talking about this Indian pilot, and we'll perhaps only in the days to come really know what happened.
10: Over the last months, the Indian aviation sector has faced a lot of questions.
0: True.
10: You have had the incident of Air India Phuket flight where a pilot was tested positive of drugs. Thereafter, a number of questions have been raised with regard to Indian pilots. This is almost like a defining moment for India, aviation industry and also Indian culture. I would say, if you remember, Indians also have faced a lot of backlash, particularly in UK, US and other countries. Racist slurs have been thrown at Indians as well. So, Captain Smith, his bravery is coming at a very defining moment in Indian culture, in India's representation and India's placement, where Prime Minister Modi has been leading from the front when it comes to speaking about how this is not an era of war. There are two live conflicts that are currently underway. Of course, we know about Russia, Ukraine, and also the West Asia crisis. And in the middle of that, in that region, which is right in the middle of the war, you have an Indian saving 174 lives. A perfect miracle. But yes, his role and valor is being something which should be seen as in a larger context of how India sees itself and how Indians have been playing a very defining moment, a defining role. When the backlash was very, very rampant, particularly in the US, let's not forget, racist slurs aside, the entire decision which has been taken with regards to the S-1B visa, that why should Indians be given a place of pride in those tech companies? All those questions being raised, and then you have this moment where a 9/11-like tragedy has been prevented by an Indian.
0: Well said. Maria, also tell me about the latest that you possibly have heard about the health of Captain Smith Machar, especially as Prime Minister has been able to speak with him. What are we picking up about his health condition right now?
10: So he's stable. He's able to talk to his family, and he has spoken to the Prime Minister as well. And the conversation was at length, is what sources in the Prime Minister's office are telling us, that it was a long conversation where Captain Smith gave details of what really happened in those moments inside the aircraft, inside the cockpit to be specific. And an important point which was highlighted by addressing Captain Smith's former boss yesterday during the course of conversation that India Today had, he said that it is next to the pilot, next to the co-pilot is where the cockpit door is. So that's where, if you, despite being stabbed, if Captain Smith was, conscious enough to open the cockpit door and then ensure that the attendants could come in and then stabilize the flight, is something that is being talked about. And, I've been speaking to the members of the Pilot Association. They say that this is him, that throughout his career, he has been someone who was always placing his country above everything else. And his professionalism was at display here. But, it was more than just a call of a good professional or a good pilot. This was an extraordinary situation where your own co-pilot had turned a perpetrator, where the person sitting next to you, who was supposed to be ensuring safety along with you, had turned to be, almost like, now that Israel says that he was a jihadist, and his entire social media timeline, the Omani pilot, is full of almost like a call to for jihad. So, all that is a subject of investigation, as we have been saying, Pooja. Was that a larger part of a terror plot? Was it a suicide attempt, or what was the larger motive behind the act of the Omani pilot? But at the moment, as an Indian, and I feel that the Prime Minister's repeated engagement with Captain Smith and his family is an indication of what this moment can mean for the country and the Indians outside India.
0: Appreciate you joining us, Maria Shakil, breaking it down for us about what happened, what is the information she's hearing, and the fact that Prime Minister Modi also sending out not just about best wishes for his health, but to also understand what happened. It's a moment, clearly, the world has been watching and tracking. Maria, thank you very much. For now, let's listen in to what Prime Minister Modi had said. He, in fact, before speaking to the captain, spoken to his family members as well. Let's listen to that.
11: कल जो एक घटना घटी और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई उनकी सारवार चल रही है आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें
0: We are wishing all the very best for a quick recovery and a healthy recovery for Captain Smith Macher. But what happened on board the Fly Dubai aircraft with many questions still unanswered? But a new angle has now emerged. When questioned by some of the media persons about the accused, as right now being reported as of an Omani co-pilot's possible links to Iran, US President Donald Trump said the attacker may have links to Tehran. Could have been radicalized by Iran because that then gives a completely different dimension to the whole incident that happened. Trump also warned that he would hit Iran very hard if he got to know that Iran was behind what is being considered a hijack bid. Israel is making similar claims, but they've stopped short of speaking about or mentioning a direct conclusion. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said co-pilot underwent Islamist radical indoctrination but insisted that it is too early to say whether Iran is involved in this incident or not. Netanyahu also met a number of passengers who were on board the flight. Israeli Prime Minister praised the presence of mind and courage of some of the passengers, like one on your screen, for their brave actions and heroism. The passengers told the Israeli Prime Minister that they tied the attacker co-pilot with headphone cables and said that he allegedly asked them to kill him after realizing that his mission had failed. The hero of the flight, though, Indian national captain Smith Macher, continues to undergo treatment for the injuries sustained while he was fighting the co-pilot, transmitting emergency signals and managed to open the cockpit door in hope that there would be at least some brave passengers who would come in for help. The Minister of External Affairs also is saying that they are closely tracking the health of the captain. The Indian envoy in the UAE has been able to meet Captain Smith after he was shifted from Saudi Arabia, from Tabuk, to Abu Dhabi for medical attention and has been able to inquire more about his well-being.
12: Has anybody briefed you about whether or not the guy, the pilot of the Fly Dubai plane, is linked to Iran?
13: We're working on it right now. They're being very coping with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
14: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
13: It could have been, yeah.
15: Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident that you could share with us?
16: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates, where he comes from, or at least where he left, where he flew off from, and will be following and possibly also participating in this investigation. So we'll find out.
17: Captain Smith, the brave son of India, unko bhi milne ka सौभाग्य मिला. अभी यहाँ पर यूएई में उनकी फैमिली भी साथ में थी और वो भी उनसे मिली. वो स्वस्थ हैं, अच्छी उनकी कंडीशन स्टेबल है और वो अच्छा रिकवर कर रहे हैं. ही उनकी जो देखभाल इधर यूएई में एक मेडिकल केयर अच्छी चल रही है, तो हम संतुष्ट थे उनको मिलकर. एक संतोष था कि वो स्वस्थ हो रहे हैं, उनकी हालत भी ठीक है. वो खुलकर बात कर रहे थे, हंस रहे थे, और एक हमारे लिए बहुत रिलीफ की बात थी, परिवार के लिए बहुत.
0: But more and more videos are coming for the ones that were recorded on mobile phones especially. And this is another video released by Israel's I-24 News, where passengers can be heard shouting, "Sit down," just moments after access to cockpit was gained. This is a video clip on your screens, and we'll also hear to what happened there. This was shared by Channel 12 News, which was filmed from a seat near the cockpit. People are shouting in a mixture of what I can understand is English and Hebrew. One person is heard saying he tried to crash the plane, in reference to the attacker co-pilot who stabbed the Indian captain. Others are yelling, "Take him out," in the direction of the cockpit, and you can see that some are also shouting, "Sit down." It's not immediately clear when the camera was first turned on, but as a result of the attack, the plane also, remember, went into a nosedive situation. Before one passenger, and this is very interesting, his name is now being confirmed as Yaniv Hayun, who is by professional plumber, who helped storm into the cockpit to not only subdue the co-pilot, but stabilize the aircraft. By the time a second pair of Fly Dubai pilots, an alternate crew that was available, also then took control of the aircraft and land. This was clearly one for the books. Listen in now. India Today earlier spoke to David Specter. He's a New York Post journalist, on possible involvement of Iran also coming India. But first, we listen into the video on your screens.
18: Go on. Relax.
19: These are concerning claims, or at least an angle that's now being looked at, a possible angle of Tehran being involved behind the planning of this very attack. If indeed found true, it would bring about a whole different level of escalation to the West Asia war that's already been stretched out for far too long without any definite conclusions.
20: Yes, and first of all, good morning, Shia. Good morning to the good people of India. It's a pleasure and an honor to be joining you in your TV screens this morning. You're absolutely right. It would potentially drastically escalate the war between Iran, Israel, the United States, and the Sunni Gulf states in the region, if it is indeed true that they're behind this. Now, President Trump's remark is not the same thing as a fully concluded intelligence assessment. But there is also Israeli reporting that the UAE is also starting to suspect that Iran might be behind this plot.
19: You know, David, I'll have to bring one thing up here. And this is something that was a question even yesterday when the initial details of this entire flight had come in. The fact that this pilot, firstly, is an Omani pilot, If we go back to the Israeli-UAE treaty, it does state that pilots or flying crew that will be flying to Israel have to be from nations which share a good relation with Israel. So if Oman plays in, I mean, from what I understand, my knowledge of the entirety of the matter, Oman doesn't fall in the list of those countries, does it?
20: No, it does not. And additionally, Oman has been on the United States' bad side throughout the negotiations with Iran. They were essentially kicked out as mediators by the United States over a feeling that they were too close with Iran and they were double dealing or not being honest with the U.S. in these talks. So Oman is a very precarious position in this entire conflict. There was Israeli reporting, I believe, in the Times of Israel that was saying that while, yes, that was the agreement that regarding pilots and crew, in reality, there have been many instances of Omani pilots flying to Tel Aviv. Trump and there's been and Bibi, now Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, have come out and has come out and said that this was a radicalized pilot and jihadist ideology. And that's what has been said so far. And we have a lot more to see as the investigation continues. Something interesting, though, is if Iran is behind this, the target, while, of course, would be Israel, obviously, it's not so far away from the anniversary of the October 7th attacks. But the target, actually, you brought up friendly countries with Israel, is also the existence of the Abraham Accords. This attack could have done tremendous damage to the Israeli-Emirati relationship.
0: Just think about this for a second. Terror at 30,000 feet, you're midair. The captain, Smith Machar, gets stabbed by his co-pilot in the cockpit on a fly-Dubai flight to Israel, leaving the co-pilot injured. The flight plunges about 17,000 feet as reports are coming in within minutes. Yet the Indian Braveheart manages, with injuries, to send out and transmit emergency signals, unlock the cockpit door, and allows at least some of the brave passengers to overpower the accused and save the aircraft from crashing. How did the situation unfold on the flight? With the information coming in right now, India Today explaining it to you using artificial intelligence, and the team has this for you. Take a look and think about what really happened midair. With this video, we also understand, remember, that this was such a save that happened because of one pilot's presence of mind despite injury, but also the courage of several other passengers. Remember, in a moment like this, it's very easy to panic. There have been hijack bids that have happened earlier. Rarely do passengers come forth showing the courage to overpower someone with a sharp object, a weapon even. And this is perhaps, if this was a hijack bid, the hijacker didn't expect this at all. And that is when possibly because many of the Israeli passengers, with the sort of military training they have, the courage and the unity they showed midair to overpower the pilot. Let's take a look at this.
1: On 30th September morning, flight FZ1073 was delayed by close to 20 minutes when it took off from Dubai International Airport to Ben Gurion Airport in Israel. Captain Smith Machar, of Indian origin, was flying the aircraft with his Omani co-pilot. Roughly 2 hours after takeoff, the aircraft was at a cruising altitude of 34,000 feet. Co-pilot took out a sharp object and attacked Captain Smith, injuring him badly. Pushing the bleeding Captain Smith on the side, the co-pilot pushed the plane's controls down. That could cause the plane to crash. The plane took a nosedive and descended from height of 34,000 feet to 17,000 feet within 2 minutes and descended further to 14,000 feet in 29 seconds.
21: Need to do an act tour? Working.
1: The sudden dive of the plane caused a commotion among the passengers. Oxygen masks came down as the plane started shaking badly. Panic for life set in among most of the passengers on board. Mm. Despite being injured, Captain Smith did not lose heart. He immediately sent the general emergency code Squawk 7700 to air traffic control. Soon after, it changed to code for hijacked Squawk 7500 before flipping back to Squawk 7700. On the ground, there was a complete chaos from Dubai to Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu immediately called an emergency meeting and Israeli fighter jets were dispatched to track the plane in the air as a security precaution. In the meantime, mid-air, another drama of heroic valor was unfolding. Injured and bleeding, Captain Smith Mutcher managed to unlock the cockpit door from the inside. And this turned out to be the game changer for the fate of Fly Dubai flight number FC1073. As soon as the door opened, crew members and some passengers entered the cockpit. One of the passengers overpowered the assailant co-pilot, while some others sustained minor injuries during the scuffle. Once the Omani co-pilot was removed, another two off-duty pilots, who happened to be on passenger on the same flight, took back the controls of the plane. The aircraft, which was falling rapidly, was handled by the pilots, raised its nose and stabilized the aircraft again at a safe altitude, and it was saved from crashing. An Israeli dentist present on the plane immediately administered first aid to the injured captain and his co-pilot.
2: My head is paining. It is hurting. It is hurting. Oh.
3: Rama. Give me the pillow. Give me the pillow. Yeah.
22: No sleep. No sleep.
2: No sleep.
22: My head is hurting. Painkiller, my hand.
3: Yeah.
22: No, your hand, it's Rama. Good.
3: Rama, can I have the Panadol? Yeah. Paracetamol. Yeah.
22: You want sleep?
3: You saved the pain. It's good for you.
23: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס
24: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה עשו לרצוח את הטייס והשתלטנו על הצוות
3: למה?
22: זה הטייס
3: שרצו
22: לרצוח הוא he hit me like
3: no
22: my hand I can move but I can't do this I can't squeeze my hand
3: זה משהו מסוכן.
1: At this point, the ill-fated flight was near the Jordan-Saudi border. Instead of going to Israel, it was decided to immediately land the plane at the nearby safe airport. Bureau Report, India Today.
25: You are watching India Today.
26: लोन भूल गया मैरी
27: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
28: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
26: स्मॉल फाइनेंस बैंक
28: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
29: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
26: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। यू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: कल जो एक घटना घटी है, और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ

0: अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर्स हैं और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी फ्रेंड्स कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से ज्यादा जुड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बन करके भी कि चार्ज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आगे और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मर दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बल्कि इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर सिर्फ पॉजिटिविटी में जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मैं जो हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी कि आपके सामने लौट रहा हूँ सर।
0: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
1: तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हम ऐसा

0: जिद से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात है।
0: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावर कुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब जो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। अब शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
0: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, और अब बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ी गुजराती में बात कर ली है। बॉबी अरे जेवा गुजराती बोले छे नहीं बोलता? गुजराती बोले छे? अच्छा, तो बाळको मळवा थई ग्यु, बाळको ने डॉक्टर एलाव कर्या मळवा माटे?
0: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ એ આવું બધું જોઈ નહીં ડરી ગઈ.
1: અચ્છા અચ્છા,
0: એ થોડી એ મારાથી બહુ ક્લોઝ છે. હા, અને મારા નાના સર બે વર્ષ પછી મેં નથી એલાવ.
1: નહીં, હમણાં તો સાચવું જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે. કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ, અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં. બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે. ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાઓ, પછી આપણે મળીએ છીએ. ગોડ બ્લેસ યુ. જય જય હિન્દ. સ્મિત, નમસ્તે.
2: What a moment, incredible moment, and we'll play that video again for you for the first time listening to this brave heart Captain Smith Machar elaborating that he's been a pilot since 17 years and with eyes closed also he understands the controls, and therefore he did what he can in that opportunity. But he was also so massively stabbed and injured, he was on the floor, and yet he managed to show presence of mind and then said, when in difficulty I recite the Hanuman Chalisa. For the first time on your screens, ladies and gentlemen, we hear it directly from the captain, and to understand currently also as he's undergoing treatment in the UAE that speaking to Prime Minister Modi, you could see that he's turned emotional, especially when his family members were being mentioned. Let's listen in again. Listen in again to the first words of Captain Smith Machar.
3: स्मित नमस्ते.
0: नमस्ते सर.
3: कैसे हो? अभी तबीयत कैसी है?
0: सर सब ठीक है सर, सब ठीक है.
3: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है.
1: महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं.
0: yes,
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने एंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं. और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की. और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया. और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं. कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया. स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा.
0: सर मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्ट्रेस हैं और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी फ्रेंड्स कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है. मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे. एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से ज्यादा उड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बन करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है. जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मित कर दे, दरवाजा बस वही है. और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था. मैं जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मरने दे सकता. बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी, सऊदी में भी, यहाँ पे तो बल्कि इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था. एंड मैं सर, मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ. उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए. बस आपका एक कॉल आ गया, मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है. अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर. सॉरी कि आपके सामने रो रहा हूँ सर.
1: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
0: तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा.
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है. और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था। इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
0: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है। क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात है।
0: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावर कुमला में भी, वढ़वान में भी, सब दो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है। और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई। और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। अब शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
0: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है। वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए और अब बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ी गुजराती में बात करे ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता?
0: बोले छे सर,
1: बेवजाय गुजराती बोले छे।
0: गुजराती सिखाई नहीं, पछी इंग्लिश सिखाई।
1: अच्छा, तो बालको मळवा थई गयो? बालको ने डॉक्टर एलाव कर्या मळवा माटे?
0: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ એ આવું બધું જોઈ નહીં ડરી ગઈ।
1: અચ્છા અચ્છા,
0: એ થોડી ઇમારતી બહુ ક્લોઝ છે। હા, અને મારા નાના સર બે વર્ષ પછી મેં નથી એલાવ કર્યો।
1: નહીં, હમણાં તો સાચું જ જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે। કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ, અને ફરિયાદનું નામો નિશાન નહીં। ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં। બસ એમની એક જ વાત હતી ને, ભગવાન સારું જ કરશે। ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાઓ, પછી આપણે મળીએ છીએ। ગોડ બ્લેસ યુ। જય જય હિન્દ।
2: વોટ અ વિડિયો! It's emotional, but it's also excellent in the manner. For the first time, we are listening to the bravery, what happened midair. How did this individual, despite professional experience, manage to keep presence of mind and took control of the situation, ensuring the plane did not crash? It's incredible listening to it and the humility that he continues to maintain. That's a first conversation with Prime Minister Modi, video call, and for the first time we hear to what happened to the Captain Smith Machar. Mara Shakil, who's been able to get access to the video and the fact that she's been trying to get us information as well on this. Mara, how do we look at this conversation? The Prime Minister also, I could sense, was turning slightly emotional, because to really even imagine what happened midair, and it had to be an Indian pilot. So it's incredible, isn't it?
4: Absolutely. A very, very heartwarming conversation here for the Prime Minister, a fellow Gujarati as much as a fellow Indian here. So the conversation ends with a bit of Gujarati, where the Prime Minister speaks about his wife and also the conversation that he had with the mother. So I think there's a lot of, connect that I could see that the Prime Minister builds in this conversation. But I think the big takeaway for me in this conversation, Pooja, would be what the Prime Minister said that he saw on social media, that had this not happened, had Captain Smith not displayed this incredible valor and had a catastrophe unfolded, what would it have been? What would it have meant? Look, this is a very incredible moment for India and Indians, particularly the aviation sector. How the Prime Minister says that Indians believe in saving lives. We do not believe in taking lives. I think that's the spirit of India. That's what the Prime Minister is talking about. And that spirit is being lauded by world over. The Prime Ministers, presidents all across the world are talking about the Indian spirit of saving lives. What Captain Smith quintessentially epitomizes today. I think in this conversation, what the Prime Minister says that, you know, I will not get into the details of what really unfolded because that's not appropriate. An investigation is underway. A multi-nation investigation is underway. So I would not get into it. This is a more of an assurance call. This is, the head of the country communicating the sentiments of the entire country and the world, and not just the sentiments of the Indians living in India, but also the sentiments of Indians abroad to Captain Smith, of what he has done, how his, this extraordinary moment, what played out in that, the cockpit, it certainly means a lot for India and Indians, and how it exemplifies and epitomizes the larger wishes to communicate to the world. I think I see this as a very, very important conversation, as much as more of a health checkup on Captain Smith as to how he is doing.
2: I can tell you, I'm sure the world is watching this video right now because they would want to hear, and there would be translations all over about what did the pilot say. But I also noticed when he said, I've been flying for 17 years, I can do it with closed eyes. And I realized that I have to act fast. I was injured, I was on the floor, but I had to act fast to ensure the plane does not crash. That's extreme presence of mind in a situation like this. And it's not always professional expertise. It has to be very individual also, Maria.
4: Absolutely. Look, I've been speaking to Captain Smith's former boss, Inay Jai Singh, who's the CMD of SpiceJet. Remember, Captain Smith worked with SpiceJet for 11 years. I've spoken to his fellow pilots. I've spoken to, Mr. Captain Sam Thomas, who is the head of the entire Aviation Pilot Association. All of them are speaking about how he, actually has been a thorough professional in his 17 years of career and counting, and how his display of, saving the lives, or in general, displaying thorough professionalism, is something that has been lauded, appreciated, talked about now that, the entire world is calling him a hero. But, for someone who has worked in the sector for 17 years, even that person, even that pilot will not be prepared for what really unfolded in those moments inside that cockpit, Pooja. Here you have a situation where the person sitting next to you, the co-pilot, has turned a perpetrator. He has turned a stabber. He is there to kill not just the pilot or the captain of the plane. He is there to, you know, perhaps as the investigation is yet to reveal, but as the Israelis are saying at the moment, that perhaps he was in some kind of a jihadi mission. You know, here is that there are multiple layers to this story. There are multiple facets to this story, which includes the entire security protocol, which changed, remember, post 9/11. Post 9/11, the world's skies changed forever. The entire, you know, passenger safety protocols and the protocols were rewritten, thoroughly. Mm. And what changes after this? Remember, here is the captain who is flying Fly Dubai and is flying over skies which are at present one of the most contested spaces in the world. This is West Asia that we are talking about. In the middle of West Asia crisis, an Indian saving lives of 174 people who are on board that plane is a message what the Prime Minister has been speaking about. Remember, Prime Minister Modi first spoke about this is not an era of war in the context of Russia and Ukraine, but thereafter he has been speaking about it also in the context of Iran and Israel and US, that this is not an era of war, that the West Asia crisis has led to crisis world over, that the Strait of Hormuz choking has meant an energy crisis in several parts of the world. I think this conversation, the way I see it, is very, very heartwarming, Pooja. To sum that up, I see this as more of a, you know, someone who is the head of the country reaching out and communicating the larger sentiments to the pilot, the captain.
2: Mario, I also like the point that you said that while it may be an individual action, he's also saved the reputation of Indian pilots, of India, and he's projected what possibly Indians can do. And each one of us are representative of our country, definitely, especially when in global situations like this as well. And also remember, you may be, so to say, an ordinary pilot flying one day. The next day, this incident happens where you've shown so much courage and Prime Minister of your country calls you up. It is a big moment. And world over, the presidents and prime ministers are talking about you, hailing you as a hero. So I can only imagine what this moment may mean for him. But Mario, we also noticed in the video, he kept his composure, given the training and the experience, even while speaking to the Prime Minister. But he did break down when Prime Minister Modi mentioned that I've spoken to your parents and I've spoken to your wife. And that's when I saw him turn emotional. Eventually, it is all about the fact that it was a miraculous survival and he'll be able to meet his family members again soon.
4: See, look, this was an ordinary moment which turned extraordinary, a perfect miracle, I would say. Everything turning out to be right. Here is Captain who manages to open the door, which is close to the co-pilot who has stabbed him. He's wounded. Then comes someone who tries to stabilize him because he has multiple grievous injuries. Then there are those inside that aircraft who manage to ensure that the plane stabilizes and then the plane lands. So I think that this is a miracle that has unfolded. And an Indian who is the one leading this. He's a hero in all possible words. Emotional moment, yes. But, you know, after looking at him with just the oxygen pipe and perhaps he has undergone surgery, you realize that he's stable, he's healthy, and he will be home soon. As the Prime Minister said, that the entire country would be welcoming him soon. He is India's hero. And he also said that, you know, only yesterday you had, you know, multiple prayers happening in several temples across the country for his well-being and ensuring that he returns home soon. But, you know, Pooja, I will emphasize on the fact that after 9/11, the aviation sector changed completely. If this would not have happened, then it would have triggered a diplomatic crisis. It would have escalated the war. Everything would have changed.
2: And you know, we would have never known what happened. Wouldn't have been any clarity exactly about what happened. All sorts of theories could have been floated. At least we now know what happened in this situation. I appreciate you joining us, Mario. Stay on, because I'm sure viewers don't want to listen to you and I as much as they want to listen to Captain Smith's first words. So I'll play that video again here. Prime Minister Modi speaking to Captain Smith. Macha.
3: Smith, namaste.
0: Namaste, sir.
3: कैसे हो अभी, तबीयत कैसी है?
0: सर सब ठीक है सर, सब ठीक है।
3: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है।
1: महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं।
0: यस सर।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने एंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मिथ को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मिथ, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
0: सर मेरे लिए, मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्ट्रेस हैं और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफिसाई कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एजर में 17 साल से ज्यादा उड़ा रहा हूँ, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आँख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी, सऊदी में भी, यहाँ पे तो बल्कि इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर, मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है, और अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था। अब हो गया सर, सॉरी क्या आपके सामने लौट रहा हूँ सर।
1: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
0: तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा उन्होंने, और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनलबेन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
0: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात है।
0: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावर कुमला में भी, वढ़वान में भी, सब दो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। अब शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
0: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, और अब बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ी गुजराती में बात कर ली है। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे, नहीं बोलता
0: बोले सर,
1: बेवजह गुजराती बोले छे, गुजराती सीखा है,
0: पची इंग्लिश।
1: अच्छा, तो बालको मळवा थई गयो, बालको ने डॉक्टर एलाउ कर्या मळवा माटे?
0: मारी मोटी दीकरी आवी थी पण आ ऊपर तो जोई नहीं डरी के।
1: अच्छा अच्छा,
0: ये थोड़ी इमारत बहुत क्लोज है। हां, अने मारा नाना सर बे वर्ष पछी मैं नथी एलाउ करता।
1: नहीं, हमारा तो साथ वो जो ये, पर सोनल बहन खूब हिम्मत बना जाए।
0: यस सर,
1: काले अपनी स्वस्थता से हमारी जोड़ बात करी, नहीं तो मैं तो अनुभव कर रहा हूँ कि अभी परिस्थिति में कोई बात ना ने फरियाद तो नामो निशान ने भूपेंद्र भाई या गीता बहन जोड़े गई काले मुंबई एयरपोर्ट पर बात करी मैं तो, पर फरियाद एक नामो निशान नहीं, बस हमने एक ही बात थी इन्हें भगवान साबुत कर से। चलो, जय श्री कृष्ण, अने खूब जल्दी साझा थाओ, पछी आपने मळीए छीए। गॉड ब्लेस यू।
0: जय
1: जय हिंद।
2: Of course, Prime Minister Modi also ending it with more smiles and a Gujarati greeting, considering that Captain Smith Machar has roots in Gujarat, life in Mumbai, and has been working with the Fly Dubai since the past 2 to 3 years, since 2022. He has been with Fly Dubai. Before that, he was in the SpiceJet airline. But as we listen to these first words of Captain Smith Machar, I'm joined by a passenger, an eyewitness, who was right there in that situation. These are, remember, eyewitness accounts of miraculous survival. And one of them, Alma Gitali, is joining me right now on this telecast on the lunch break. Alma, so the first words from the Indian pilot, Captain Smith Machar, when you hear from him directly, when he says, I was badly injured, I had fallen, but I knew I had to act fast and I had to save the plane from crashing. This is before you, as a passenger with your family, wouldn't even realize what was happening in the cockpit. What do you have to say to that first reaction from the pilot?
5: Wow, it is so emotional to see Miss Captain Smith. It's now recovering. It is so emotional. I'm almost speechless. It's so emotional. I'm out of words. I'm wishing him a very, very fast recovery and a fast return to his family and home. Wow, it's so surprising. I'm full of emotion. I have no words.
2: I understand, because I've spoken to you yesterday and as well. I think the families must be still now getting to terms to what happened really in this case. When did you first realize that it is not a usual turbulence, that something has happened in the cockpit?
5: Yeah. After the second roping, we understood that something is going on in the cockpit and something is going wrong, because it's not a technical issue, because it was like a roller coaster and we saw people rushing to the cockpit, and then we understood that something has happened and an action needed to be taken, and fortunately a lot of luck, a lot of people. I don't know, so brave people that managed to take over the airplane and get us back to safety land. Wow, and to see now Captain Smith talking to Prime Minister Modi, I'm totally excited. It's overwhelming.
2: I think that's the word. It is overwhelming to at least hear from him, and he's still injured. We can see all the pipes with in his nose for clearly the feeding and the treatment right now, bandaged head. We don't even know how many more stab wounds that he has survived on his body. Almuk, tell me this, that when a pilot says that I was being attacked by another pilot and I knew I had to act fast, I opened the door. That is when, in hope that other passengers could come in. Do you think this is professional experience? Do you think this is individual bravery that he has shown? Had he not been able to do that, that aircraft in which you were there with your family was going to crash.
5: I think it's the most bravest thing. Like there is no other brave. It's like the biggest and it's enormous action to take. It's the bravest action to take, it's almost not normal, but on the other way, it's the basic human action to save life, because we want to live. We are in the part of the world that is looking for peace. We want to live with people. We share the same values, especially with the Indian nation. I think Mr. Captain Smith is the best representative of the Indian nation and the Indian spirit, and we share the same spirit.
2: I brilliantly said, because I think he may have acted with his own individual impulses, but it has reflected the kind of Indianness that we have had and the manner in which to follow your dharm and karm. Amog, also tell me, at a point like this, he maintained his composure while he was talking to Prime Minister Modi, but he turned emotional when his family members were mentioned, the fact that he's going to meet them again. You were with your family in the aircraft. Can you tell me again who all were with you in that aircraft when you were traveling? Because it's a realization that all of you family members are going to again be able to sit together, healthy, in peace, and to know that the plane survived.
5: I was with my two children, my daughter, 13 okay. years old, and my son, 16 years old, and my wife. And, you know, we owe our life to Captain Smith and the other brave passenger that took over. And we're gonna live with it to the rest of our lives. And, you know, as I was saying yesterday, Mr. Captain Smith has to be rewarded here in Israel. He's one of the he's our hero. He's a global hero, and hopefully he will recover fast. Because I know, because I saw how hard wounded he was. He was in a situation between life and death. Like
2: can you tell
5: that.
2: Me more about that, if you were able to see the injured pilot, because the passengers also helped restrain both the pilots till the Saudis had arrived. What kind of situation were you able to see, both with the attacker pilot and Captain Smith Machar, who was stabbed?
5: I don't want to get into the details, but I can tell sure. you that he was hardly wounded, between life and death. And the doctor that was on board saved his life. And the other pilot was wounded again, but he's not the issue, of course. Mm-hmm. He's the attacker. He was knocked out. And I'm so glad that the life of Captain Smith were saved. So
2: appreciate it, Almogen. Before I let you go, he's our hero. Everyone's hero. He's humanity's hero. How will you and your family remember this airline travel that happened?
5: We will remember it for the rest of our life. Of course, it was a scary one, but it shows the real spirit of the human being, and of course, the real spirit of the Indian nation and the Israeli nation, which are born together.
2: Well said, because both Israel and India definitely understand what terrorism can truly do, especially when it takes religious overtones. Appreciate you joining us, Almog. Best wishes to your family, and thank you for speaking so well and highly about the Indian pilot and the Indian nation. So there you have it, the hero of humanity, not of just the passengers, not just for India, but for the world watching this right now, that when passengers and the good human beings unite, the situation can turn. And even a hijacker or an attacker will not succeed. On that note, I'm wrapping up this bulletin, heading into a short break. Stay tuned to India Today. We'll return with the first words of Captain Smith Machar.

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

सभी दिल्ली के नो फ्यूल नो पीयूसीसी नो फ्यूल का जो हमारा फार्मूला है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। उस अभियान को एक मिशन मोड में लागू किया जाएगा जिसके लिए दिल्ली में सभी 500 एएनपीआर युक्त पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के खिलाफ भी सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अक्टूबर में इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और नंबर में पीयूसीसी केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह से नवंबर तक हम इन पीयूसीसी को भी बेटर अपग्रेड करना चाहते हैं।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: ए यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रणय जी, पहली बात तो शाम को यहाँ पर आपका प्रोटेस्ट होगा, लेकिन परमिशन आपको नहीं दी गई, आपने परमिशन मांगी थी, पुलिस से कुछ बातचीत हुई आपकी?
1: देखो, पिछले जुलाई के महीने में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे भारत के नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया था, जेंजीज और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, क्या तब परमिशन मांगी गई थी? और मुझे परमिशन के बारे में बात करना हो तो यहाँ पे पॉलिटिकल रैलीज होती है, उसको कैसे परमिशन मिलती है? और जो हम कर रहे हैं, हम हमारी हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इट्स दैट डिफिकल्ट।
0: सीजेपी की तरफ से किस तरीके से आयोजन होगा, कितने लोग आने की उम्मीद है?
1: देखिए, संख्या तो बहुत बड़ी है, भारत भर से लोग आएंगे और हमारे पास वॉलंटियर्स है जो क्राउड मैनेजमेंट में रहेंगे, एंट्री पॉइंट्स में रहेंगे और मुंबई पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, मुंबई पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है और उस माध्यम से हम ये पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल कंडक्ट करेंगे।

0: देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर्स हैं और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफर जाहिर कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एजर में 17 साल से ज्यादा जुड़ा रहा, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बन करके भी कि चार्ज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एक राह नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मर नहीं सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सावधी में भी यहाँ पे तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था, एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मेरे को हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी कि आपके सामने रो रहा हूँ सर।
0: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
1: तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है, और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी, सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्पष्टता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात है,
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
0: आपको पता नहीं होगा लोग सावर कुंडला में भी वढ़वान में भी सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। अब शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
1: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ ये रिकवरी होगा, एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
0: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए और अब बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ी गुजराती में बात करी ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता?
1: बोले छे सर,
0: बेहो जाए गुजराती बोले छे।
1: નહીં,
0: હમણાં તો સાચવું જ જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે, કારણ કે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં, બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે,
1: બસ બસ એકદમ એમાં જ રહે છે સર।
0: ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાઓ, પછી આપણે મળીએ છીએ। ગોડ બ્લેસ યુ, જય જય હિન્દ।
2: I can't think of a single person who would watch that interaction and not have a smile on his or her face like I have, but nevertheless, as the investigation into the Fly Dubai mid-air horror intensifies, a new angle has emerged. When questioned by the media about the accused Omani co-pilot's possible links to Iran, US President Donald Trump said that the attacker may have links to Tehran and could have been radicalized by that regime. Trump also warned that he would hit Iran very hard if he gets to know that Iran was behind the hijack bid. Israel is also making similar claims, but has stopped short of drawing that conclusion. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said that the co-pilot underwent Islamist radical indoctrination, but insisted it is too early to say whether Iran was involved in the incident or not. Netanyahu also met a number of passengers who were on board the flight. The Israeli Prime Minister praised the passengers for their brave actions and heroism. The passengers told the Israeli Prime Minister that they tied the attacker co-pilot with headphone cables and said they allegedly asked him to kill them after realizing that his mission had failed. Meanwhile, the hero of the flight, the man you just heard, Captain Smith, continues to undergo treatment for the injuries he sustained while fighting the co-pilot. The Ministry of External Affairs says that it closely follows the health of Captain Smith Machar. The Indian envoy in the UAE has also met Captain Smith after he was shifted to Abu Dhabi medical attention and inquired about his well-being.
3: Has anybody briefed you about whether or not the guy, the pilot of the Fly Dubai plane, is linked to Iran?
4: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes, but we're working on it right now.
3: So this guy might have been either put in there by the IRGC or radicalized some other way, and then he tried to take down the plane.
4: It could have been, yeah.
5: Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident that you could share with us?
6: Well, it's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates, where he comes from, or at least where he left, where he flew off from, and will be following and possibly also participating in this investigation. So we'll find out.
7: Captain Smith, the brave son of India, unko bhi milne ka saubhagya mila. Abhi yahan par UAE mein, unki family bhi saath mein thi aur wo bhi unse mili. Wo swasth hain, achhi unki condition stable hai aur wo achha recover kar rahe hain. He's unki jo dekhbhal idhar UAE mein, ek medical care achhi chal rahi hai. To hum santusht the unko milkar, ek santosh tha.
2: I'm being joined by none other than Kishore Machar, who is the uncle of Captain Smith, joining us on India Today. Kishore ji, can you hear me? Can you hear my voice?
8: Yes,
2: yes, please. Yes, thank you very much for talking to us. First of all, I would like to thank you all from your whole family and India Today and the whole country. Smith has made the whole world, the whole country's name roshan kiya puri duniya ke samne. Sabse pehle hum ye janna chahenge ki aapke aur aapke parivar ki Smith se baat hui hai is ghatna ke baad jo do din nikal gaye.
8: Main to abhi Bombay mein hu, lekin Smith ke pitaji mere chote bhai wo Dubai mein gaye, unse mile hain aur hamare pradhanmantri ne wo vyavastha kar di thi aur wo hospital mein jaake mile. Wo bhi swasth hain Smith, aur iski hame khushi hai bahut.
2: तो ये जी बिल्कुल, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है सब पूरे सारे इंडिया टुडे के दर्शकों को, देशवासियों को, क्योंकि आप कैप्टन स्मिथ इस समय स्वस्थ है. आज हमने पूरे देश ने देखा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात किया स्मिथ के साथ, उनको भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है, उनकी बहादुरी की तारीफ भी की. आपको कैसा लगा ये इंटरेक्शन प्रधानमंत्री और स्मिथ के बारे में के बीच में देखकर, आपने कैसा महसूस किया?
8: अपने घर के बुजुर्ग कितने प्यार से जैसे बात करते हैं, ऐसा फील हो रहा था कि कोई अपने अपना ही है, कोई जो अपने पिताजी के माफी जैसे बात करते हैं ना अपने बच्चों से, अब ऐसा फील हुआ. ऐसे सूदिंग, इतने अच्छे से बात किए उन्होंने और बड़ा गर्व बहुत फक्र महसूस हो रहा है अपने प्रधानमंत्री जी के लिए. उन्होंने जिस तरह से बात की और एकदम से हमको सराहना दी है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा.
2: किशोर जी, ये बताइए, आप स्मिथ के बड़े पापा है, आपने उन्हें शायद बचपन से देखा होगा, आपकी क्या यादें हैं स्मिथ के, जैसे आप वो कैसे थे जब वो युवक थे, जैसे जब उन्होंने पायलट ट्रेनिंग की थी, क्या आपको पहले से पता था कि उनमें एक ऐसी बहादुरी है, एक देश प्रेम है जो आज पूरी दुनिया ने देख लिया है?
8: एक तो आपको बताऊं कि मैं और मेरा भाई हम लोग 50 साल साथ ज्वाइंट रहे हैं. पिछले 10 साल से जब इसे बच्चे बड़े हुए तो भाई ने भी अलग से फ्लैट लिया और मैंने भी अलग से फ्लैट लिया. बाकी हम दोनों मेरा बच्चा, मेरा बेटा और भाई का बेटा स्मिथ, मेरा बेटा भी पायलट है और स्मिथ भी, हमारा भाई का बेटा भी पायलट है. और बहुत ही सरल और अच्छा उसका बचपन में भी, वो ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज एंड एवरीथिंग. एक नॉर्मल जो साधारण से बच्चे जो रहते हैं उस हिसाब से था, कोई ऐसी बात नहीं थी कोई.
2: नहीं, बट उन क्या आप, ये पूरी दुनिया इस चीज से हैरान है कि कैसे एक व्यक्ति इतने घाव सहने के बाद भी उनमें इतनी क्षमता थी, मानसिक क्षमता थी, शारीरिक क्षमता थी कि वो कॉकपिट का वो कोड को दबा सके, कॉकपिट को खोल सके, उनको प्लेन को क्रैश होते वक्त भी रोक सके, जो दूसरे को पायलट जो उन पर प्रहार कर रहे थे उनको भी हैंडल करा, पायलट कॉकपिट का दरवाजा भी खोला. ये वही व्यक्ति कर सकता है किशोर जी जो मानसिक और शारीरिक तरीके से एकदम शक्तिशाली है, someone who is very strong in every aspect, not just physically but mentally as well. क्या आप और बता सकते हैं? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि स्मिथ को ये शक्ति कहाँ से मिलती है? उन्होंने कहा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, क्या वो हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जो भक्ति में विश्वास करते थे जिनसे उन्हें शक्ति मिलती थी?
9: नहीं, ये हमारे घर में सिस्टम है, हनुमान चालीसा का पठन होता ही है डेली, और हमेशा जब भी वो बाहर निकलता था भगवान के सामने हाथ जोड़ के ही बाहर निकलता था। और ये इनका एक्सपीरियंस जो पिछले 12 साल से वो फ्लाई कर रहा है, 9,500 आवर्स हो गए हैं उसके फ्लाइंग के, ये सब उन्हीं एक्सपीरियंस का और उसकी जो मानसिक स्थिति, ये सारी उनके एक्सपीरियंस का ये है। उस समय उसको भगवान ने शक्ति दी और उसको जितना भी उसकी अपने में एक जो भी अपना एक्टिविटी जो उसको करना चाहिए था वो उसने अपना काम कर लिया, बस यही। उस समय उसको भगवान ने प्रेरणा दी होगी और जरूर उसने वो उसको अच्छी तरह से निभाया।
2: ईश्वर जी, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस बहादुरी को? क्योंकि जैसे बहुत बोला जाता है कि इंडियंस की तरफ, इंडियन पायलट्स के ऊपर थोड़ी सी पिछले कुछ महीनों से एक दुनिया भर में एक शंका की तरह से देखा जाता था। जब पिछले साल ही एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, बहुत लोगों ने ये थियोरीज बनाई थी, कॉन्स्पिरेसी थियोरीज बनाई थी कि शायद पायलट की तरफ से गलती थी या कुछ हुआ था। अगर ये, भगवान ना करे, अगर ये प्लेन क्रैश हो जाता तो बहुत लोग उंगली उठाते थे स्मिथ की तरफ और उनके थ्रू कैप्टन स्मिथ पूरे भारत देश पर उंगली उठाते थे। उन्होंने इन 170 लोगों की जान तो बचाई है, पूरे देश का गौरव बढ़ा दिया पूरे दुनिया के सामने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
9: बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। बस ये कोई टेक्निकलिटी से तो मुझे कोई वाकिफ नहीं हूं मैं इससे, लेकिन ईश्वर को उसने उस समय जो भी समझदारी दी, जो भी उसको आशीर्वाद दिया और उसने जो भी उसके मन में आया उसको बचाने के लिए, सारे अपने पैसेंजर को, अपने आप को, और उसने उस समय उतना वो काम कर लिया। बाकी तो बाकी सारी बातें होती रहती है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उसको एक जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा कोई आशीर्वाद मिला होगा, ऐसी कोई शक्ति मिली कि वो अपना काम कर गया।
2: किशोर जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि क्या आपको, आपके परिवार को कोई जानकारी मिली है कि कैप्टन स्मिथ कब रिलीज होंगे और कब भारत आ सकते हैं? क्योंकि मुझे, आई एम श्योर पूरा देश उसके लिए इंतजार कर रहा है जिससे वो उनको वेलकम कर सके और उसको सम्मानित कर सके।
9: अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है, अभी वो स्मिथ हॉस्पिटल में है, उसके आगे का क्या प्लान है वगैरह कोई कुछ मुझे पता नहीं है।
2: जी, हम समझ सकते हैं।
9: कुछ पता नहीं है। यस यस यस, धन्यवाद।
2: किशोर माचा जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। यू हर्ड justifiably very proud uncle talking about how he was not surprised about the bravery Captain Smith showed, and also how the entire family feels gladdened by the gesture by the Prime Minister today to speak to him as if it was a family's elder who was speaking to Captain Smith. Meanwhile, continuing our coverage about this entire saga of what happened with the Fly Dubai aircraft, in another video released by Israel's I-24 News, passengers can be heard shouting, "Sit down," just moments after access to the cockpit was gained, courtesy Captain Smith Macha. Now, in a video clip shared by Channel 12 News, which was filmed from a seat near the cockpit, people can be heard shouting in a mixture of English and Hebrew, with one person saying he tried to crash the plane in reference to the Omani co-pilot who stabbed the pilot plane's Indian captain. Others are heard yelling, "Take him out," in the direction of the cockpit, and order people in the cabin to sit down. Now, it's of course not immediately clear when the camera was first turned on. As a result of the attack, the plane went into a nosedive before Yani Vayun, a plumber who helped storm the cockpit to subdue the pilot, tried to stabilize it, allowing a second pair of Fly Dubai pilots on board to take control of the aircraft and land it.
10: Go out. Take him out.
2: Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv captured the ordeal of what Israeli officials said was an attempt to crash the plane. Listen in.
11: Go
2: Now, India Today earlier also spoke to Tina Goswami, Smith's former colleague. Listen in.
11: When you heard these first words, the video that emerged, as a pilot listening to a fellow pilot, help us understand one, because I really want to, from you, try and understand the situation. You're also a popular Instagrammer, I understand, and you put out a video recently elaborating on the situation. Many would say, oh, this was easy. He wasn't really in a bad situation. How will you explain the kind of courage and presence of mind that Captain Smith Machar showed at that point within seconds?
12: If I can tell you that it's extremely courageous, because let me tell you the situation. Whenever we have any emergency situation or any non-normal situation, normally it's a crew coordination. Like whenever you have any emergency in flight, you have one pilot controlling the aircraft and other pilot is communicating with the agencies. Now here comes that one pilot is trying to crash, one pilot is trying to attack and kill somebody. And this pilot, he's simultaneously doing, he is helping the aircraft also. He's trying to get up. Look at his presence of mind. I mean, I almost got a tears in my eyes that imagine he's put the squawk. So we have this emergency code where, we have a squawk code where you are identified on the ground on AT air traffic control that this aircraft is going from A to B. But when you put emergency code, which is 700, they identify that this aircraft has an emergency. Thereafter, he puts 7500, which is unlawful interference. So That's the ground controller. They came to know. And look at the presence of mind. This is in that situation when he is getting attacked, when the aircraft is in a nosedive situation where you have almost the negative G factor, where you cannot even control your body.
11: Mm.
12: And that time, his thinking that first I have to save myself, because unless you save yourself, you cannot save other people.
11: Mm.
12: And thereafter, so it's a very confined and small place.
11: Mm.
12: Getting up from that place, opening the door is very difficult. And it's extremely difficult situation when other pilot is trying to stop you and attack you simultaneously.
11: Mm.
12: So it's a very difficult situation, and the way he did it was it's extraordinary.
2: India Today also earlier spoke to David Spector from the New York Post on the possible involvement of Iran in the Fly Dubai flight hijack bid.
13: These are concerning claims, or at least an angle that's now being looked at, a possible angle of Tehran being involved behind the planning of this very attack. If indeed found true, it would bring about a whole different level of escalation to the West Asia war that's already been stretched out for far too long without any definite conclusions.
14: Yes, and first of all, good morning, Shia. Good morning to the good people of India. It's a pleasure and an honor to be joining you in your TV screens this morning. You're absolutely right. It would potentially drastically escalate the war between Iran, Israel, the United States, and the Sunni Gulf states in the region if it is indeed true that they're behind this. Now, President Trump's remark is not the same thing as a fully concluded intelligence assessment. But there is also Israeli reporting that the UAE is also starting to suspect that Iran might be behind this plot.
13: You know, David, I'll have to bring one thing up here. And this is something that was a question even yesterday when the initial details of this entire flight had come in. The fact that this pilot, firstly, is an Omani pilot. If we go back to the Israeli-UAE treaty, it does state that pilots or flying crew that will be flying to Israel have to be from nations which share a good relation with Israel. So if Oman plays in, I mean, from what I understand, my knowledge of the entirety of the matter, Oman doesn't fall in the list of those countries, does it?
14: No, it does not. And additionally, Oman has been on the United States' bad side throughout the negotiations with Iran. They were essentially kicked out as mediators by the United States over a feeling that they were too close with Iran and they were double dealing or not being honest with the U.S. in these talks. So Oman is a very precarious position in this entire conflict. There was Israeli reporting, I believe, in the Times of Israel that was saying that while, yes, that was the agreement that regarding pilots and crew, in reality, there have been many instances of Omani pilots flying to Tel Aviv. Trump and there's been and Bibi, now Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, have come out and has come out and said that this was a radicalized pilot and jihadist ideology. And that's what has been said so far. And we have a lot more to see as the investigation continues. Something interesting, though, is if Iran is behind this, the target, while, of course, would be Israel, obviously, it's not so far away from the anniversary of the October 7th attacks. But the target, actually, you brought up friendly countries with Israel, is also the existence of the Abraham Accords. This attack could have done tremendous damage to the Israeli-Emirati relationship.
2: It was terror at 30,000 feet when Captain Smith was stabbed by his co-pilot on a Dubai flight to Israel, leaving him injured. The flight plunged around 17,000 feet in seconds, yet the Indian Braveheart managed to unlock the cockpit door, allowing passengers to overpower the accused and save the flight. So how exactly did things unfold on this flight? We explain using AI. Here's a report.
15: On 30th September morning, flight FZ1073 was delayed by close to 20 minutes when it took off from Dubai International Airport to Ben Gurion Airport in Israel. Captain Smith Machar, of Indian origin, was flying the aircraft with his Omani co-pilot. Roughly 2 hours after takeoff, the aircraft was at a cruising altitude of 34,000 feet. Co-pilot took out a sharp object and attacked Captain Smith, injuring him badly. Pushing the bleeding Captain Smith on the side, the co-pilot pushed the plane's controls down. That could cause the plane to crash. The plane took a nosedive and descended from height of 34,000 feet to 17,000 feet within 2 minutes and descended further to 14,000 feet in 29 seconds.
16: Need to do an act, Tori? Walking.
15: The sudden dive of the plane caused a commotion among the passengers. Oxygen masks came down as the plane started shaking badly. Panic for life set in among most of the passengers on board. Despite being injured, Captain Smith did not lose heart. He immediately sent the general emergency code Squawk 7700 to air traffic control. Soon after, it changed to code for hijack Squawk 7500 before flipping back to Squawk 7700. On the ground, there was a complete chaos from Dubai to Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu immediately called an emergency meeting and Israeli fighter jets were dispatched to track the plane in the air as a security precaution. In the meantime, midair, another drama of heroic valor was unfolding. Injured and bleeding, Captain Smith Mutcher managed to unlock the cockpit door from the inside. And this turned out to be the game changer for the fate of Fly Dubai flight number FC1073. As soon as the door opened, crew members and some passengers entered the cockpit. One of the passengers overpowered the assailant co-pilot, while some others sustained minor injuries during the scuffle. Once the Omani co-pilot was removed, another two off-duty pilots, who happened to be on passenger on the same flight, took back the controls of the plane. The aircraft, which was falling rapidly, was handled by the pilots, raised its nose and stabilized the aircraft again at a safe altitude, and it was saved from crashing. An Israeli dentist present on the plane immediately administered first aid to the injured captain and his co-pilot.
17: My head is spinning. It is hurting.
18: Oh. Rama. Give me the pillow. Yeah.
17: No sleep. My head is hurting. Yeah, painkiller my hand.
18: Yeah.
17: No, your hand, it's Rama. Good.
18: Rama, can I have the Panadol? Yeah. Paracetamol.
17: You won't sleep?
19: You saved the
17: no.
19: pain. It's good for you.
20: תקפו אותנו ואנחנו שומרים פה על הטייס
21: תקפו אותנו עכשיו במטוס הזה עשו לרצוח את הטייס והשתלטנו על הצוות
18: למה?
17: זה הטייס
18: למה?
17: He just he hit me like
19: No.
17: My hand, I can move, but I can't do this. I can't squeeze my hand.
15: At this point, the ill-fated flight was near the Jordan-Saudi border. Instead of going to Israel, it was decided to immediately land the plane at the nearby safe airport. Bureau Report, India Today.
2: Shifting focus to matters back home, Delhi police sources have given us these details over what happened at Jantar Mantar today. According to the Delhi police, around 1,100 people were detained during the protest today. Some of those detained have since then been released. Some police personnel, according to the Delhi police, have also sustained injuries during the protest. Now, this is, of course, a big claim coming in from the Delhi police, claiming there were police personnel who also suffered injuries during the protest. Let me go across to my colleague Arvind, who's joining us with more details. Arvind, Delhi police ka bada bayan keh rahe hai ki kuch police aur karmiyon ko bhi kshatigrast ko bhi injuries hue hai is incident mein.
22: Protest chal raha tha. Delhi police ne ye kaha tha ki jo Nayi Delhi ilaka hai wahan par BNS 163 laga hua hai. Kai protester aaye the, sabhi ko detain kiya police ne. Takriban 1000 से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया और उसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया है. लेकिन जो प्रोटेस्टर और जो पुलिस है उनके बीच स्कफल में कुछ पुलिस वालों को माइनर इंजरी भी आई है. सुबह ये कॉल दिया गया था जंतर मंतर पहुंचने का, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था सोशल मीडिया पर भी कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है क्योंकि ये सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर BNS 163 लगा हुआ है. तो प्रिवेंटिव डिटेन किया गया जो जितने भी प्रोटेस्टर आए थे और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ पुलिसकर्मियों को इस प्रोटेस्टर और उनके बीच स्कफल में चोटें भी आई है, लेकिन ये माइनर इंजरी है.
2: अरविंद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस with those details. Let's give our viewers some context over what happened in the national capital today, which witnessed a massive showdown during the opposition protest against the CEC. Seven Aam Aadmi Party workers who tried to stage a protest at Jantar Mantar were detained by the police as prohibitory orders were at place in the site and are as we speak. Senior CPM leaders, including General Secretary M.A. Baby and former MP Brinda Kar, have also been detained by the Delhi police. Meanwhile, Jantar Mantar has been sealed off by the cops. Delhi police and security forces have fortified the Election Commission's office as well, along with Jantar Mantar, in view of protests called by opposition parties against CEC Ganesh Kumar. Entry and exit at 12 metro stations, including Mandi House, Central Secretariat and Raju Chowk, have been shut. The opposition has placed several demands, including the resignation of CEC Ganesh Kumar, the suspension of SIR, restoration of deleted voters, and a probe into lapses in transparency in poll data.
0: Many workers of Aam Aadmi Party gathered at Jantar Mantar, following which Saurabh Bhardwaj and Sanjeev Jha, both MLAs of Aam Aadmi Party, they also reached. As we are speaking, they have now been detained, and let me try to show you the visuals from Jantar Mantar, where the leaders of Aam Aadmi Party and many workers of Aam Aadmi Party, they have been detained by the Delhi police. They have now been taken to a nearby police station, and you can see as to how the protesters, more protesters are being detained from here, and the Delhi police continuously asking people not to gather here at Jantar Mantar as section 163 is in place. Remember that from the place from where right now we are reporting is the main entry point to Jantar Mantar, and Delhi police has already sealed this entire area. As I am speaking to you, I can see large number of Delhi police personnel who are deployed in the first layer of barricading. Then right behind them are RAF personnel. They, all of them, are seen wearing helmets to ensure that if any kind of untoward incident happens, the situation can be brought under control. As I am speaking, the situation is comparatively calmer. A couple of minutes back, we saw how leaders like Saurabh Bhardwaj, Sanjeev Jha, and various other Aam Aadmi Party workers were detained, and they have now been taken to a nearby police station.
1: ज्ञानेश कुमार को अरेस्ट करना है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज कटिंग ऑफ पीपल जेन्युइन एलिजिबल पीपल फ्रॉम वोटर्स लिस्ट इट इज ए क्रिमिनल एक्ट ज्ञानेश कुमार शुड बी अरेस्टेड नॉट अस एंड ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड
3: देखिए एसआईआर खारिज करने की जरूरत है कि 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को मत के अधिकार से वंचित कर दिया गया है इस एसआईआर को खारिज करके जो मतदाता सूची थी 4 जून 2024 को जब लोकसभा के नतीजे आए थे उसको बहाल करना चाहिए और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए ये आज पूरी देश की मांग है.
2: With that, it's time for a short commercial. On the other side is News Break with my colleague Pooja. Stay tuned.
23: You are watching India Today.
24: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
25: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
26: सोच बदलो और बैंक भी

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: स्मित नमस्ते।
4: नमस्ते सर।
3: कैसे हो, अभी तबीयत कैसी है?
4: सर सब ठीक है, सर सब ठीक है।
3: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं।
4: yes,
3: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता।
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: now joining me. Dipesh, over to you. Take us through the details about the protest. What are you hearing? What are the slogans like?
1: विनंती आहे आमचे volunteers, आयकार लागलेले volunteers.
2: Definitely, we are here at Shivaji Park where Abhijit Tipke will come, will reach here in a short. And as you can see, in hundreds of numbers, CJP protesters have gathered here to protest and to see the resignation of Gyanendra Kumar. And they have not got they have not got the permission of the police yet, but they are still protesting. And we are going to talk some of the protest. सर क्या कहेंगे, क्या डिमांड्स हैं ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे को लेकर ही आपके?
3: सर डिमांड है कि 24 घंटे का टाइम दिया गया था उनको, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ा. जिस तरह से उन्होंने वोट चोरी कर रहे हैं कंटिन्यू, और अभी उनका पर्दाफाश हुआ है, उनको रिजाइन देना ही पड़ेगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. उनके उनके अंदर की बात आई है निकल के कि उन्होंने मनमानी किया है, संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं. जब तक वो नहीं देंगे इस्तीफा, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं.
2: बट प्रोटेस्ट की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है पुलिस की तरफ से, हो सकता है बाद में कार्रवाई.
3: प्रोटेस्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है लोकतांत्रिक देश में. हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारा अधिकार है यहाँ प्रोटेस्ट करना.
2: Definitely, so they are protesting here and peacefully they are protesting over here, even though they have not got permission from the Mumbai police, but the protest is going on, and this protest will start in a while. Abhijit Tipke will reach here and he will going to address this all the crowd over here. They are preparing for this protest from since morning, and we have to see that which political party and which leaders will also come here, because when we spoke to the CJP, they also said that some of the political leaders will going to join this protest, and we have to see that whether they will come at this time or not, because last time when CJP protested over here, at that time Aditya Thackeray, Amit Thackeray and other leaders joined their protest. But today we have to see that whether they will join this protest or not. But as you can see, the protesters are present over here in large numbers, and also the bandobast has been given by the Mumbai police is in large number. They have diverted certain traffic routes, and they have also asked people to avoid this route during this protest time. Over to you.
0: All right, Dipesh Tripathi is showing to us about this protest. Remember, in Mumbai, it is being formally organized and led by the Cockroach Janata Party, though supported by the opposition parties as well. In Delhi, it is primarily the opposition that is organizing it, like Aam Aadmi Party, the Congress, the left-wing parties as well. Let's dip into the visuals that are coming in on the screens. Dipesh, also tell me, do you see Abhijit Tipke there? Do you see Tussaurav Das? What I do see is someone dressed up as Mahatma Gandhi, because it's also 2nd October, so it's symbolic that they've started their protest today. But do you see some recognizable faces?
1: Amir Kazi and Sahil Parsegal, yani tayar raise stage.
2: Yes, we are Abhijit Tipke will reach here in a while, and before that Saurav Das and Ashutosh Ranka visited here. They saw the all the arrangements, they spoke to their volunteers, and they will going to reach here again with Abhijit Tipke. And we have spoke to many protesters over here. We are speaking with them since in the morning, and what they are saying that they will going to sit on the protest till their demands are met. And we have to see that will this protest, they have said that this protest will take place from 4 to 7 or 8 p.m. But we have to see that whether this protest will end or 7 or 8 p.m. or this protest will going to continue till their demands meet. What we are learning from the police sources that they have not given the permission, but they will going to keep an eye so that law and order situation can also be maintained. All the protesters who are gathered here, they have just one demand, that Gyaneshwar Kumar should resign. And this protest will not only stop here, this is the starting point of the protest. And after this, the protest will go take place in other parts of the India.
0: On with me about what is happening at this protest. Let's listen in to this ground report sent in by Mustafa Sheikh.
4: पर आप कैसे सभी वही के लोग उम्र के लोग आए हुए हैं, लेकिन युवा जो लोग हैं बहुत ज्यादा आए हुए हैं, पढ़ लिखे लोग आए हुए हैं इस पर. और आपको है जो विजुअल दिखा देते हैं, जो शिवाजी पार्क में यहाँ पर सीजेपी का आंदोलन होने जा रहा है, जो कि इस ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए पहला आंदोलन है मुंबई में. इसके बाद देश भर में आंदोलन करने का प्लान है. हालांकि परमिशन इस प्रोटेस्ट को नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेम्पो जो ट्रक है उस पर यह पूरा स्टेज बना लिया गया है. स्टेज पर आकर अभिजीत क्या कहते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा. उसके बाद क्या होता है? फिलहाल तो ये हम कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो आप कह सकते हैं होता हुआ दिख रहा है बिना परमिशन के, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं, वापस जाते हैं, आगे क्या प्लान रहता है ये एक कह सकते हैं आपके बड़ी बात रहने वाली। जी
0: I'm also now with Dipesh Tripathi, who's right there in the center of this protest. Dipesh, is it possible to speak to some of the protesters around you? What are they saying you? What are they telling you? Are they going to stay put, even if the police says you don't have the permission to stay at Shivaji Park? And is it just a one-day protest, or they continue, or intend to continue for the next few days?
2: Yes, sir, definitely we try to speak with some of the protesters as well, and we all the students union are joining. Sir, क्या कहेंगे resignation को लेके protest कायम रहेगा या कैसे? और कुछ demands आपकी?
5: अब धीरे धीरे सब कुछ सामने आ ही रहे तो प्रोटेस्ट तो कायम रहना ही चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन झुकने वालों में से तो है नहीं। तो पुष्पा तो पहले कहकर गया था, पर अब जेंजी कह रहा है झुकेगा नहीं साला।
0: That is what is being said, that it is the Gen Z power that some of these members are portraying, that they will continue to stand. But also remember, it's interesting how this is playing out. Yes, last time, Dipesh, I'll come to you for that. Last time the protest was organized was in Delhi. This time it was in Mumbai. And we'll continue to take the details that are coming in. All right, stay on with me, Dipesh and Mustafa. I have more news coming in. This is in Mumbai, where all the action currently is being seen. Let's go across to that big breaking news coming in on the news break. There is a protest versus protest that is happening in Mumbai. Anti-CJP protest also breaking out in Mumbai. So there is a CJP protest that is being organized by Dipke, Saurabh Das and others. There is a stir against CJP chief Abhijit Dipke and the Aam Aadmi Party. Also remember, because it is a BJP governed state, they are ensuring that those voices are also heard. So you're looking at two visuals on your screen, ladies and gentlemen. Primarily, of course, the CJP protest that is being organized. And then there is an anti-CJP protest also that is on. Let's dip into those visuals as well and try and listen into what's happening. Now you can see, ladies and gentlemen, you can look at on your visuals on the screen. On one side, you see there are protests that are being organized by the CJP, but the counter protests have also started. Look at that. It's against Abhijit Dipke. They've come with full placards and posters. This could lead to confrontation as well, with visuals of Abhijit Dipke, slogans against him. These are the latest visuals on your screen. Angry protesters who've barged in, and it appears that it could be the same venue where the CJP-led protest and the anti-CJP protest have broken out. You look at the queue of these men who are coming forth, it looks like that is the anti-CJP protest. And we'll try and get in a word from our reporters on the ground as well. The visuals, as you can see, primarily on the screens, focusing on the slogans that are coming in as well. So we'll be tracking the big story that's coming in from Mumbai. And can Abhijit Dipke-led protest of the CJP in Mumbai stand for longer and have the consequence and the results like the Delhi protest had happened? Let me now take you to the big news of the day. Early this morning, we had that visual for the first time of Captain Smith Masher. The first words from the captain, who's of course now being celebrated as a hero across the world. While many questions remain unanswered about what exactly happened mid-air on that aircraft from Dubai to Tel Aviv. But Prime Minister Narendra Modi here speaking to Captain Smith Masher. And you can see the man is still injured, though recovery is on board as well. But you can see a bandaged head, the pipes, which is for oxygen support and more, also with him. But says that he's feeling relatively better. And then goes on to explain to Prime Minister Modi that it is a moment of honour to be speaking to him, and describes what happened mid-air. And the fact that this man says that he realised in that moment when the plane was going down, that even though he's being stabbed, even though he's injured, if he does not get back up now and open the door of the cockpit, that plane is going to crash. Listen in now to this exclusive video and the fact that for the first time we hear directly from Captain Smith Masher.
6: Smith, namaste.
7: Namaste, sir.
6: Kaise ho abhi, tabiyat kaisi hai?
7: Sir, sab theek hai, sir, sab theek hai.
6: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं.
7: yes,
6: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई. और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं. और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की. और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया. और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता. कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया. स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा.
7: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर हैं और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं. मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है. मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे. एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं 17 साल से जा जुड़ा रहा, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है. जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मित कर दे, दरवाजा बस वही है. और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था. बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मार नहीं सकता. बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बल्कि इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था. एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ. उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान नहीं मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी क्या आपके सामने रो रहा हूँ सर।
0: This is a moment of pride for all Indians, for humanity in general as well, because whether it's the pilot or the airline crew, everyone's watching this. If they are ever in a situation like this, God forbid again, because you're not talking about a hijacker or an attacker among the passengers, but in the cockpit, one of the pilots turned out to be an aggressor and an attacker. While the investigation is still on about what exactly happened, at least we know some details. Eyewitnesses are coming forth. People who've known him are speaking about Captain Smith Machar as well, while the identity of the attacker pilot is still, for some strange reason, not being revealed. But I want you to listen in now to the family member, those who have known the captain earlier as well. But it's only one part that you heard of Captain Smith. Before I go across to the family members who've been speaking to India today, there's this one aspect about what he said to Prime Minister Modi that's going viral. Listen in.
6: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
7: तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
6: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्पष्टता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
7: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ, जो मुझे बोला गया है। क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
6: सही बात है।
7: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
6: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है अपने।
7: नहीं सर, मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं इसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
6: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मिथ, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, एंड बहुत बड़ा काम आपने किया है।
7: यस सर,
6: जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे, और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए।
0: Before he became the hero Captain Smith Mutcher, he was a family member of the Mutcher family. So we got in touch with one of the uncles who've known him since he was a young boy. Listen in to this conversation.
8: I'm being joined by none other than Kishore Mutcher, who's the uncle of Captain Smith, joining us on India Today. Kishore ji, can you hear me? Can you hear my voice?
9: हाँ जी
8: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहले तो मैं तहे दिल से आप सबको, आपके और आपके पूरे परिवार को इंडिया टुडे की तरफ से और पूरे देश की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। स्मिथ ने पूरे दुनिया को, पूरे देश का नाम रोशन किया पूरी दुनिया के सामने। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी, आपके और आपके परिवार की स्मिथ से बात हुई है इस घटना के बाद जो दो दिन निकल गए?
9: मैं तो अभी बॉम्बे में हूँ, लेकिन स्मिथ के पिताजी मेरे छोटे भाई वो दुबई में गए, उनसे मिले हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने वो व्यवस्था कर दी थी और वो हॉस्पिटल में जाके मिले, वो भी स्वस्थ हैं स्वीट, और इसकी हमें खुशी है बहुत।
8: तो ये जी बिल्कुल, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है सब पूरे सारे इंडिया टुडे के दर्शकों को, देशवासियों को, क्योंकि अभी कैप्टन स्मिथ इस समय स्वस्थ है। आज हमने, पूरे देश ने देखा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात किया स्मिथ के साथ, उनको भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है, उनकी बहादुरी की तारीफ भी की। आपको कैसा लगा ये इंटरेक्शन प्रधानमंत्री और स्मिथ के बारे में, के बीच में देखकर आपने कैसा महसूस किया?
9: अपने घर के बुजुर्ग कितने प्यार से जैसे बात करते हैं, ऐसा फील हो रहा था कि कोई अपने, अपना ही है कोई, जो अपने पिताजी के माफी जैसे बात करते हैं ना अपने बच्चों से, अब ऐसा फील हुआ। ऐसे सूदिंग, इतने अच्छे से बात किए उन्होंने और बड़ा गर्व, बहुत फक्र महसूस हो रहा है अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। उन्होंने जिस तरह से बात की वो एकदम से हमको सराहना दी है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा।
8: ईश्वर जी ये बताइए, आप स्मिथ के बड़े पापा है, आपने उन्हें शायद बचपन से देखा होगा, आप, आपकी क्या यादें हैं स्मिथ के, जैसे आप वो कैसे थे जब वो युवक थे, जैसे जब उन्होंने पायलट ट्रेनिंग की थी, क्या आपको पहले से पता था कि उनमें एक ऐसी बहादुरी है, एक देश प्रेम है जो आज पूरी दुनिया ने देख लिया है?
9: एक तो आपको बताऊं कि मैं और मेरा भाई हम लोग 50 साल साथ ज्वाइंट रहे हैं। पिछले 10 साल से जब इसे बच्चे बड़े हुए तो भाई ने भी अलग से फ्लैट लिया और मैंने भी अलग से फ्लैट लिया, बाकी हम दोनों मेरा बच्चा, मेरा बेटा और भाई का बेटा स्मिथ, मेरा बेटा भी पायलट है और स्मिथ भी, हमारा भाई का बेटा भी पायलट है, और बहुत ही सरल और अच्छा उसका बचपन में भी, वो ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज एंड एवरीथिंग, एक नॉर्मल जो साधारण से बच्चे जो रहते हैं उस हिसाब से था, बोलते ऐसी बात नहीं थी कोई
8: नहीं। बट उन, क्या आप, ये पूरी दुनिया इस चीज से हैरान है कि कैसे एक व्यक्ति इतने घाव सहने के बाद भी उनमें इतनी क्षमता थी, मानसिक क्षमता थी, शारीरिक क्षमता थी कि वो कॉकपिट का वो कोड को दबा सके, कॉकपिट को खोल सके, उनको प्लेन को क्रैश होते वक्त भी रोक सके, जो दूसरे को पायलट जो उन पर प्रहार कर रहे थे उनको भी, उनको भी हैंडल करा, पायलट कॉकपिट का दरवाजा भी खोला। ये वही व्यक्ति कर सकता है किशोर जी जो मानसिक और शारीरिक तरीके से एकदम बल, एकदम शक्तिशाली है, समवन हु इज वेरी स्ट्रांग इन एवरी एस्पेक्ट, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली एज वेल। क्या आप और बता सकते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि स्मिथ को ये शक्ति कहाँ से मिलती है? उन्होंने कहा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, क्या वो हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जो भक्ति में विश्वास करते थे जिनसे उन्हें शक्ति मिलती थी?
9: नहीं, ये हमारे घर में सिस्टम है, हनुमान चालीसा का पठन होता ही है डेली, और हमेशा जब भी वो बाहर निकलता था भगवान के सामने हाथ जोड़ के ही बाहर निकलता था, और ये इनका एक्सपीरियंस जो पिछले 12 साल से वो फ्लाई कर रहा है, 9,500 आवर्स हो गए हैं उसके फ्लाइंग के, ये सब उन्हीं एक्सपीरियंस का और उसकी जो मानसिक स्थिति, ये सारी उनकी एक्सपीरियंस का ये है, उस समय उसको भगवान ने शक्ति दी। और
0: So before this video of Captain Smith Mutcher explaining what exactly happened, there was another video that did go viral after everyone wanted to know who is this captain, what happened. That video, which coincidentally was a podcast talking about the aviation industry, life as a pilot, was on the podcast of one young podcaster, Zalak Mehta. I spoke with her a short while ago about her video going viral now and what he mentions about if there's ever a disaster, how important is the crew? A question that was otherwise a normal, usual question that was asked to a pilot. In times like these, it became the question everyone wanted to hear and see the answer to. Here's more. In that video, the one statement that everyone's talking about is when he said, if there's ever a situation on a plane like this, it's the crew that comes to your rescue. Always respect the crew, pilots, and of course, the air host or the hostess. Do you think that is, call it coincidence, call it destiny, that he became that hero himself in a situation like this?
10: Absolutely. But what he mentioned was also correct. I mean, at the same time, not only the crew, of course, is at the rescue of the passengers. Along with that, he had all mentioned that when the doctors are present, on board, how helpful they are, because he had given one or two experiences that he had had on his flight about one pregnant lady giving birth and one passenger with shortness of breath. And I think he has always been someone who has looked after the safety of his passengers, and that is something that really stood up to, along with the crew and the doctors.
0: What was your sense of Captain Smith Marshall when you were doing that interview about him as a person, as a professional, as a pilot, while he was talking about his passion, that is flying?
10: Accordingly, while interviewing him or after that, what really stayed with me was his humility. Despite everything that he has accomplished, he was extremely grounded and kind and extremely passionate about what he does, actually.
0: So clearly everyone is curious. They want to know more about this 39-year-old captain. Where is he from? What are his interests and more and everything about him? So we decided to dig out certain research and to help you understand the courage that was shown by this pilot, a trained one, experienced in flying and showing presence of mind of extraordinary nature. A special report about Captain Smith Marshall.
11: It was 8:35 on Wednesday morning when Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv witnessed an unprecedented cockpit attack. But in the middle of the chaos stood one brave Indian pilot, Captain Smith Marshall, who faced a murderous assault by his co-pilot and fought to regain control of the aircraft. Marshall was stabbed during the scuffle, but despite his grave injuries, he managed to fight back and open the cockpit door, letting in passengers and crew, who eventually overpowered the assailant. Marshall had 11 years of experience with SpiceJet and is a Boeing 737 fleet and safety expert. Today, Marshall is being hailed as a hero across the world. Israeli officials said the co-pilot, an Omani national, allegedly tried to take control of the aircraft and crash it. Prime Minister Narendra Modi lauded Marshall's bravery, saying his actions averted what he described as another 9/11-like attack. The Prime Minister also spoke to Marshall's family and praised his exemplary courage.
12: इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया. हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है.
11: एंड इट इजंट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर. From his former colleagues to neighbors, people are celebrating the pilot who fought to bring the aircraft and its passengers to safety.
13: This is the job of a pilot. His job is to protect the lives that have been entrusted to him.
14: And in this case, 180 lives were entrusted to Captain Smith Machak, and he did a tremendous job.
15: Really brave of him. I'm hats off. I hope he's safe and nice. That's all I pray. Wonderful and amazing person. Just very humble.
11: But there is an extraordinary twist to this story. Almost a year before the attack, Machar spoke on a podcast about the importance of having a doctor on board an aircraft. Someone who could just potentially save a pilot's life during an emergency.
16: We are up there, and if something happens, you know, who's going to save you? We'll be lucky enough to have a doctor on board, but then if not, then they are trained. I'm not saying they are trained to do, you know, surgeries and stuff, but then they can save your life, you know. So it is unfortunate how the entire outlook of people is towards the crew.
17: Mm.
16: But when things are going wrong, you need them.
11: Those words today sound prophetic. A dentist on the Fly Dubai flight attended to Machar's injuries after the attack. In aviation, courage is measured in seconds. Captain Smith Machar had a few seconds between life and death, and he used them to fight for everyone on board. Bureau Report, India Today.
0: Despite his grievous injuries, Captain Smith Machar also mentioned the courage of the passengers after the door of the cockpit that he opened in hope that passengers will come to his rescue. Some passengers did. I spoke to one of the eyewitnesses on board that flight, Amo Gitali, who listened to this video of Captain Smith Machar, and here's what he had to say. Almost the first words from the Indian pilot, Captain Smith Machar, when you hear from him directly, when he says, "I was badly injured, I had fallen, but I knew I had to act fast and I had to save the plane from crashing." This is before you as a passenger with your family wouldn't even realize what was happening in the cockpit. What do you have to say to that first reaction from the pilot?
18: Wow, it is so emotional to see Miss Captain Smith. It's now recovery. It is so emotional. I'm almost speechless. It's so emotional. It's, you know, I'm out of words. I'm wishing him a very, very fast recovery and a fast return to his family and home. Wow, it's so surprising. I'm full of emotion. I have no words.
0: I understand, because I've spoken to you yesterday and as well. I think the families must be still now getting to terms to what happened really in this case. When did you first realize that it is not a usual turbulence, that something has happened in the cockpit?
18: Yeah, after the second roping, we understood that something is going on in the cockpit and something is going wrong, because it's not a technical issue, because it was like a roller coaster, and we saw people rushing to the cockpit. And then we understood that something has happened, and an action needed to be taken. And fortunately, a lot of luck, a lot of people, so brave people that managed to take over the airplane and get us back to safety land. Wow, and to see now Captain Smith talking to Prime Minister Modi, I'm totally excited. It's overwhelming.

4 बजे से प्रदर्शन शुरू होगा, लेकिन तैयारियां जो हैं वो अभी से काफी देखने को मिल रही हैं। बाहर जो तैयारियां सीजेपी की तरफ से की गई थी वो तो हमने दिखाई। ये मुंबई पुलिस है जो हजारों की तादाद में यहां पर सुबह से ही मौजूद है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है उसको भी यहां बुला लिया गया है। आप देख सकते हैं अभी यहां पे इनकी ब्रीफिंग हुई थी कि किस तरीके से कौन से हालात में किस तरीके से रिएक्ट करना है, इसको लेकर जो आला अधिकारी थे मुंबई पुलिस के उन्होंने ब्रीफ किया। महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद हैं और शाम को जो प्रोटेस्ट होगा उसको लेकर किस तरीके से मुंबई पुलिस आगे बढ़ेगी उसको लेकर यहां पर अभी थोड़ी ही देर पहले ब्रीफिंग खत्म हुई है। सीजेपी की तरफ से कहा गया था कि वो जेल भरो आंदोलन करेंगे और इसी को मद्देनजर रखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही SRPF हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, उनको भी यहाँ पर स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये पूरा जो शिवाजी पार्क का इलाका है यहाँ पर फिलहाल किसी भी गाड़ी को खड़ी करने की मनाही है। ट्रैफिक पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है। ट्रैफिक एडवाइजरी थोड़ी ही देर में इश्यू हो जाएगी कि कौन से रूट्स में क्या बदलाव किए गए हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये शिवाजी पार्क का जो ग्राउंड है इसके जो जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन सबको बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि जब भीड़ हो और जो प्रोटेस्ट शुरू हो तो कोई भी प्रोटेस्टर जो है वो अंदर ना आ पाए, वो गेट के बाहर ही रहे, इस ग्राउंड में ना आ पाए। और यहीं पे कई पॉलिटिकल रैलियां होती हैं, कई सभाएं होती हैं। यहीं पे परमिशन की मांग की गई थी सीजेपी द्वारा प्रोटेस्ट करने की, लेकिन जिसे मुंबई पुलिस ने मना कर दिया। और फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस बल कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, सबकी ब्रीफिंग यहाँ पर हो चुकी है और जैसे जैसे शाम का समय होगा और पुलिस बल यहाँ पर आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। सर्विलेंस वैन जो पुलिस की होती है उनको स्टैंड बाय पर रखा गया है, साथ ही अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसको भी किस तरीके से रिस्पॉन्स किया जाएगा उस पर भी पुलिस ने काफी तैयारियां की हैं।

0: सभी दिल्ली के नो फ्यूल नो पीयूसीसी नो फ्यूल का जो हमारा फार्मूला है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। उस अभियान को एक मिशन मोड में लागू किया जाएगा जिसके लिए दिल्ली में सभी 500 एएनपीआर युक्त पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के खिलाफ भी सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अक्टूबर में इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और नंबर में पीयूसीसी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह से नवंबर तक हम इन पीयूसीसी को भी बेटर अपग्रेड करना चाहते हैं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: ने खाली बसाए थे, खाली बसून घ्या सगळ्यांनी. जेवढे लोक समोर समोर उभा आहेत प्लीज दादा खाली बसून घ्या. माझी विनंती आहे, मी हात जोडून विनंती करतोय, खाली बसा प्लीज. हात जोड कर बोल रहा भाई, नीचे बैठ जाओ प्लीज, प्लीज नीचे बैठ जाओ.
1: So as Abhijit Dibke there preps up the crowd, urging them to sit down while he gets ready to address the crowd, it'll be interesting to see what he actually says. Let us cut across to our very own Abhijit. Abhijit Karande, our reporter there who's been covering the protest. Let's cut across to him to get a word from him. Abhijit, hame bataiye kya chal raha hai wahan par? Kitna lagbhag crowd aaya hoga Shivaji Park pe?
2: देखिए, ये बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है. आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो स्टेज लगाया हुआ है और ये मीनाताई ठाकरे का जो पुतला है वहां से पूरे रास्ते में आपको क्राउड दिखाई देगा. और ये कॉल जो है वो सीजेपी ने दिया हुआ कॉल था. और इस तरफ जो है वो आइकॉनिक शिवसेना भवन है और शिवसेना भवन ये रास्ता जो है वो दादर स्टेशन की तरफ जाता है और लगातार यहां से लोग जो है वो आ रहे हैं. हाथ में तिरंगा है, बहुत सारे लोगों के हाथ में पोस्टर्स है. हालांकि इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से पुलिस ने परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने किसी को अटकाव भी नहीं किया है, रोका नहीं है प्रोटेस्ट करने से. इसलिए पुलिस का भारी बंदोबस्त आपको सब तरफ दिखेगा, लेकिन किसी को कोई रोक नहीं रहा है. और आपको बता दें कि ये साइलेंस जोन है. यहाँ के स्थानीय लोगों ने थोड़ा विरोध जताया था, लेकिन बाद में वो भी कम होता दिखाई दिया. और ये जो तस्वीरें हैं, दोपहर में बहुत धूप थी. एक्चुअली जो समय दिया गया था वो 4 बजे से दिया गया था, लेकिन धूप बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है और इसकी वजह से लोग जो है वो धीरे धीरे जमा होना शुरू हो चुके हैं. और अभी भी लोग आ ही रहे हैं और थोड़ी देर में अभिजीत दिबके और उनके टीम जो है और उनके साथ में मुंबई के कई जानी मानी हस्तियां जो है वो इस स्टेज पे आएंगी. एक ट्रक लगाया हुआ है और ट्रक पे गणेश कुमार जी का एक पोस्टर लगाया हुआ है और मांग सीधे तौर पर एक ही है कि वो रिजाइन करे और रिजाइन करने के बाद ही ये आंदोलन थमेगा, ऐसा उन्होंने कहा है. हालांकि मुंबई के बाद आपको बता दें कि 6 अन्य शहरों में भी इस तरीके का आंदोलन होने वाला है और 6 शहरों में आंदोलन होने के बाद अक्टूबर के एंड में सीजेपी जो है वो फिर से जंतर मंतर का कॉल देगी जिस

0: और गड़बड़ियों के कारण जो है नाराजगी बहुत है। हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से ये पोस्टर्स जो है बहुत तरीके के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, हाथ में तिरंगा है और आगे आप अगर देखेंगे तो भगत सिंह जी की तस्वीरें हैं और इस तरीके से बहुत यूथ जो है, यूथ का इसमें बहुत बड़ा सहभाग जो है वो हमें दिख रहा है।
1: पर आप है समय जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी तब भी कई सारे लोग शिवाजी पार्क पर पहुंचे थे प्रोटेस्ट के लिए, क्या आप एक कंपैरिजन हमें दे सकते हैं जो यहाँ बैठ के विजुअल्स देख रहे हैं कि तब के क्राउड और अभी के क्राउड में क्या फर्क है, एंड ऑल्सो तब की एज ब्रैकेट में और अभी के एज ब्रैकेट में क्या फर्क है, कितनी मात्रा में कितनी संख्या में लोग तब आए थे और अभी आए हैं, क्या आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं हमारे लिए? All right, we'll try and connect back to Abhijit, but in the meanwhile, let's also try and cut across to those live visuals on your screens at the moment. Let me just give you a sense of what's happening. Abhijit Dibke is on top of that vehicle over there, and he's trying to address the crowd. There, he's trying, asking them, urging them at the moment to sit down because he's going to make a speech. Remember, this is part two, or a season two, as he had himself called, of the CJP protest. This is looking, by the way, very different from what we saw earlier in the day during the Delhi protest. During the Delhi protest, these numbers were not allowed to actually come together. We've seen detention of over 1,000 people. 1,100 people, to be precise, more than that, in fact, have been picked up by Delhi police at different corners. Even before they could get together, even before they could gather at Jantar Mantar, they were all picked up and taken in detention. This includes people from different political parties, from left, from ISA, from Aam Aadmi Party as well. But in Mumbai, the story looks pretty different. Let me just cut across and go back to Abhijit to try and understand what really is happening. Abhijit, if you can hear me now, I was trying to understand from you the difference in the kind of people who have turned up this time. किस तरह के लोग पहले जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी उस समय सीजेपी के प्रोटेस्ट में किस तरह के लोग आए थे और आज जो आए हैं, उस समय कितनी क्वांटिटी में लोग आए थे, कितने नंबर्स में लोग आए थे और इस बार कितने नंबर्स में लोग आए हैं, और क्या आपको एक एज ब्रैकेट दिख रहा है, क्या ये अभी भी एक युवा क्रांति कहलाई जा सकती है सीजेपी की, और डू यू थिंक पीपल अक्रॉस सेक्शंस हैव एक्चुअली कम इन ऑन अ कॉल फॉर आस्किंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द सीईसी?
0: देखिए, लगातार हम इसका रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पिछली बार जब सीजेपी का क्राउड आया था दादर में तो बहुत बड़ी तादाद में युवा लोग थे, इस बार भी युवाओं की संख्या ही ज्यादा आपको दिखेगी। हालांकि मिडिल एज वाले लोग भी आए हुए हैं लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है युवा लोग है, जेंजीज है, महाराष्ट्र के अन्य विभिन्न भागों से भी आए हुए हैं। हालांकि मुंबई से ही लोग शामिल है ऐसा नहीं है, मुंबई से भी आए हैं, कुछ लोग पुणे से आए हैं, कुछ लोग जो है मराठवाड़ा से आए हैं, कुछ लोग खानदेश से आए हैं। मैंने ऐसे भी लोगों से बात की जो लोग सुबह 3 बजे से लेकर ट्रैवल करके इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और उनका मानना है कि जिस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस हैंडल किया जा रहा है वो सही नहीं है। एक तरीके से लोकतांत्रिक संस्था जो है वो इम्पार्शियल तरीके से चलनी चाहिए, लेकिन उनका भरोसा इस बार जो है वो उस पर दिखाई नहीं दिया है। कुछ जेंजीज से हमने बात की जिनका पहली बार वोटिंग होना है इस बार, तो उन्होंने कहा है कि देखिए फॉर्म 6 के साथ जिस तरीके की एक और अर्जी जोड़ी गई है तो वो एक तरीके से उनको एक्सक्लूड करने के लिए है। तो बहुत तरीके का नैरेटिव, बहुत तरीके का परसेप्शन लोगों में है, लेकिन ये बात तो है कि पिछली बार जैसा ही क्राउड जो है वो गैदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इस क्राउड में नहीं दिख रहा है। हर लोग जो है अपने अपने एंड से खुद ट्रैवल करके दादर तक आ रहे हैं, कोई सबरबुम से आ रहे हैं, मुंबई के बोरीवली है, कांदिवली है, जिसके नबी मुंबई है, और उन पूरे इलाकों से

0: लाइफ में गांधी जयंती यहां पे महसूस हो रहा है मुझे। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि रोशनी थोड़ी कम हो रही है, आप लोगों की वजह से पूरा आसमान रोशन हो चुका है, भारत का भविष्य दिख रहा है, आप लोग इतना, ये इतना सुंदर दृश्य है। मुझे आज यहाँ दिल्ली में तो इनके साथ होने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ होने का मौका मिल रहा है। ये आंदोलन चालू रहेगा तब तक जब तक को क्यानू को क्यानू को, अरे कर ले थोड़ी शर्म ज्ञानू को क्यानू को, अरे कर ले थोड़ी शर्म ज्ञानू। भाई गांधी जी का दिन है, प्यार से बोलो, जो भी बोलना है प्यार से बोलो, प्यार से ही जीत होगी।
1: Joined in the CJP protest in solidarity there. What you see on your screen right now is Vishal Dadlani, the leadership of the CJP. You've got Abhijit Dipke, you've got Saurabh Das, you've got several other leaders of the CJP as well. Ashutosh Ranga also there. Now, what are we expecting here to happen over the next couple of hours? If the last of the CJP protest was all about concentration of power in Delhi, of trying to get the mood of the young people in Delhi, this time the focus seems to be Mumbai, seems to be Maharashtra. You see the leadership there wearing Gandhiji on their sleeve, quite literally. And we are told that through the course of the day, there will be several celebrities who will be joining in as well. But let's keep dipping back to see what exactly is happening there at the Shivaji Park in Mumbai.
2: Vande! Vande! Vande! Mujhe lagta hai, aaj Gandhi Jayanti par isse badi shraddhanjali Gandhi ji ke liye nahi ho sakti. श्रद्धांजलि गांधी जी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन गांधी जी को जितना अंग्रेजों ने परेशान नहीं करा था, उतना इन संघों ने हमें परेशान करके रखा है। और ये इन संघियों को लगा था, इन चड्डी पहनने वालों को लगा था कि गांधी को गोली मारकर गांधी को खत्म कर देंगे। यहां पर हर कोई एक गांधी है, गांधी कभी मरते नहीं, गांधी जी इस देश की आत्मा है, गांधी इज द सोल ऑफ दिस नेशन। और जब तक इस देश में हम लोग हैं तब तक गांधी जिंदा है। गोडसे जैसे हजारों आएंगे हजारों जाएंगे, कुछ दिल है कायर है गोडसे जैसे लोग, लेकिन गांधी है जो इस देश की आत्मा है, गांधी है जिसके रास्ते पर ये देश चलेगा। और ये देश बना था गांधी के विचारों पर, ये देश टिका है गांधी के विचारों पर। अगर गांधी नहीं होते तो आज हमारा देश नहीं होता। तो ये गोडसे की विचारधारा वाले गांधी के हथियारों के विचारधारा वालों से कहना चाहता हूं, कितनी भी कोशिश कर लो गांधी को तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे, गांधी कभी खत्म नहीं होंगे। कोई महामानव आएगा कहेगा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, अरे बोलने की जरूरत नहीं, हमें पता है तुम इंसान हो ही नहीं, पता है हमें, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं कि तुम नॉन बायोलॉजिकल हो। आएंगे और कहेंगे मैं विश्वगुरु, अरे कौन सा विश्वगुरु, जहां अमेरिका में जाता है अमेरिका में, वहां पर अमेरिका का प्रेसिडेंट भी पहले यही बात करता है, नरेंद्र मोदी आया है फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी। और ये चले खुद को गांधी और नेहरू से बड़ा बनाने के लिए। इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले सातों जन्म में भी नहीं हो पाएगा। गांधी नेहरू और अंबेडकर से बड़ा बनने की आपकी औकात नहीं है। If Gandhi is the soul of India, Dr. Baba Saheb Ambedkar is the backbone of India. And Jawaharlal Nehru is the mind of India. Soul, mind, backbone, ye Gandhi, Ambedkar aur Nehru hai hamare liye. बराबर भी नहीं हो, जूतों के बराबर तो कितने भी कोशिश कर लो, क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं? किसी भी हाल में बस इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। इनको लगता है इलेक्शन जीतकर ये गांधी और नेहरू और अंबेडकर से बड़े बन जाएंगे। अरे गांधी, नेहरू, अंबेडकर जो बड़े बने थे वो क्या बलिदान और सैक्रिफाइस से बड़े बने थे। और उन्होंने, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और नेहरू ने हमें वोट का अधिकार तब दिया था जब हमें पता भी नहीं था इलेक्शंस होते क्या है। कितने लोगों को पता था 1951 में फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? कितने लोगों को पता था वोटिंग क्या होती है? कितने लोगों को पता था इलेक्शंस क्या होते हैं? कितने लोगों को पता था लोकसभा क्या होती है, विधानसभा क्या होती है? जब लोगों को उनके अधिकार भी पता नहीं थे तब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और नेहरू ने उनको अधिकार दिए। ये उनकी महानता है, ये उनकी महानता है। जिनको पता नहीं था उनके अधिकार क्या है फिर भी उनको उनका अधिकार दिए। और ये आ रहे कि ये अधिकार छीन लूंगा, वो अधिकार छीन लूंगा, ये छीन लूंगा वो। अरे भाई, कभी कुछ दे भी दे, कभी कुछ दे भी तो दे, कितना लूटेगा देश को? नोटबंदी करके लाइन में लगा दिया, कोरोना में लाइन में लगा दिया वैक्सीन के लिए, अब वोट के लिए भी लाइन में लगा रहा है। इसको दूसरा कुछ काम आता ही नहीं, ये बस लाइन में ही लगाते रहता है जनता को, खुद कोई काम करता नहीं है। हमें काम पर लगाते रहता है कि आओ नोटबंदी लगा दी, एटीएम की लाइन में लगो, बैंक के लाइन में लगो, कोरोना आ गया वैक्सीन की लाइन में लगो। अभी एसआईआर लेकर कह रहा है कि वोट रजिस्टर करवाने के लिए लाइन में लगो। क्या लगा रखा है यार, सरकार में हो काम करो। 12 साल थे, कुछ अच्छा कर लेते, कुछ बेहतर कर लेते देश के लिए। हमारे पैसे पर बस दुनिया घूम रहा है ये इंसान, हमारे पैसे पर बस दुनिया घूम रहा है। एक तो मतलब पूरा, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर बना है, मैंने चाय बेची है, मैंने चाय बेची है, मैंने चाय बेची है। अरे क्यों बेची? हमने कहा था चाय बेचने के लिए, हमने कहा था स्कूल चले जाते, पढ़ लिख लेते, कुछ नौकरी कर लेते, हमने कहा था चाय बेचने के लिए। और दूसरा, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ, तेरे वजह से सारे बच्चे आज गरीब माँ के बेटे हो गए। खुद तो गरीब माँ के बेटे बन ही गए थे, हमें भी गरीब माँ के बेटे बना दिया। मतलब ये क्या चल रहा है? कह रहे थे कि हम तो फकीर आदमी, झोला उठाकर चल देंगे। झोला कौन सा होगा वो नहीं बताया, झोला होगा गुची का, बेलेंसियागा का या प्राणा का। क्योंकि देखो देखो, भाई को कुछ आता हो या ना हो, भाई का फैशन सेंस तो बहुत बढ़िया है। भाई के फैशन सेंस और स्क्रीन केयर को तो मानना पड़ेगा। मतलब बड़े से बड़े एक्टर, बड़े से बड़े मॉडल्स को भाई स्किन केयर में पीछे छोड़ देगा। एक सेकंड। लेकिन मैं, अरे अरे आऊंगा भाई, अरे था मना तो बोलू दिया दी, मना तो बोलू दिया दी, मी दोन मैंने पासून नहीं बोल लो, मी तुमच्या मुळी थे, मी तुमच्या मुळी था आलोय। येस मी आहे ना, येस येस। अरे ऐकून पाहिजे, ऐकून
1: live updates there coming in from the Shivaji Park. But as we speak, there are two protests actually that have broken out at Shivaji Park. While you have Abhijit Dibke and a couple of celebrities who've also landed up there, they're all raising their voice for the removal of the CEC. There is an anti-CJP protest also breaking out. Let's tell you a little bit about that. The anti-CJP protest is breaking out at the same Shivaji Park. This one is against Abhijit Dibke and the Aam Aadmi Party. They are outraging and slamming Abhijit Dibke over selective outrage, according to them. So on your screen right now, two different protests, both breaking out in Mumbai. One called by the CJP, which has the support of the other opposition parties as well. And at the same venue, you have a bunch of others who have come in, who seem to be coming out of this one bus, brought in there, and they are the ones protesting against the CJP. So there's a protest versus protest as we speak, all happening live at Shivaji Park. But like we said, just to give you a perspective on the whole story, if Delhi was the venue of the CJP protest last time around, Maharashtra and Mumbai is the...
3: इकट्ठा होके आते हैं और हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारा अधिकार है ये हमारा हक है और ये बिल्कुल हम अपने संविधान के साथ जायज कर रहे हैं और खासतौर से आज क्योंकि गांधी जयंती है तो इससे बेहतर दिन तो हो ही नहीं सकता था
4: क्या ये राजनीतिक मुद्दा आपको नजर आता है या लोगों का मुद्दा नजर आता है
3: ऑफकोर्स लोगों का मुद्दा नजर आता है भाई अगर मेरा हक मुझसे छीन लिया जा रहा है तो फिर ये कैसे राजनीतिक मसला तो है ही डेफिनेटली और होना भी चाहिए भाई ऑपोजिशन क्यों है
5: ऑपोजिशन इसलिए है कि जब अगर सरकार को गलत कदम उठाए तो वो इकट्ठा होकर बोले तो वो पॉलिटिकल रीजनिंग भी उसकी है लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा हक है कि मैं बोलूँ कि नहीं ये पॉसिबल है आपको मुझे देना पड़ेगा
4: शुक्रिया शबन आजमी यहाँ पर आई हुई है इससे पहले विशाल भारद्वाज भी यहाँ पर आए थे धीरे धीरे लोगों का आना यहाँ पर इकट्ठा शुरू हो गया है लेकिन जो सवाल जो पूछा गया था और जिसका जवाब थोड़ी देर पहले शबाना जी
1: कॉलीग साहिल जोशी देयर रिपोर्टिंग इन एंड टॉकिंग टू सेवरल सेलिब्रिटीज हु हैव टर्नड अप एट शिवाजी पार्क इन सॉलिडैरिटी विद द कॉकरोच जनता पार्टी ऑन दिस मैसिव कॉल दैट दे हैव कॉल्ड दिस प्रोटेस्ट फॉर दिस इज आस्किंग फॉर द रिमूवल ऑफ द सीईसी Now, while that protest gets underway and we keep dipping into getting you the latest, let me give you a view of what happened a couple of hours earlier in the national capital. Even as protests in Mumbai continue, national capital witnessed a mass demonstration with the India bloc demanding the resignation of the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. The All India Students Association, several civil society groups led the protest today and joined the workers of the Aam Aadmi Party, the Congress, the Left, the RJD, all of them together asking for one thing. The CEC must go. The police, however, stopped demonstrators from gathering at the Jantar Mantar with several of them detained. We are told the number has gone up to over 1,100. Senior CPM leaders, including the General Secretary there, the former MP Brinda Karat, amongst others, who were taken into custody. The opposition has targeted the government and the Election Commission, while the government has hit back defending the poll panel. But on your screens over there, the crowds were not allowed to enter. Anyone who was trying to get inside Jantar Mantar to stage a protest was picked up, taken into buses, detained and taken away. Here's how it happened.
6: Two months after the CJP stir over exam paper leaks, the national capital once again is in the grip of protests. This time over the special intensive revision of electoral rolls. The protesters are demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar. The All India Students Association and several civil society groups led the protests on Friday. Workers of Aam Aadmi Party, Congress, left parties and RJD joined the demonstrations. However, unlike the previous CJP protest, the police this time stopped protesters from gathering at Jantar Mantar. Many protesters were detained.
7: The leaders of Aam Aadmi Party and many workers of Aam Aadmi Party they have been detained by the Delhi police. They have now been taken to a nearby police station, and you can see as to how the protesters, more protesters are being detained from here, and the Delhi police continuously asking people not to gather here at Jantar Mantar as section 163 is in place.
6: Senior CPM leaders, including General Secretary M.A. Baby and former MP Brinda Karat, were taken into custody.
8: The police is detaining her. Clearly, she's not even being allowed to speak to the media. And here you see, as we talk, everyone being picked up almost immediately.
6: The opposition lashed out at the government and the election commission over the issue.
9: ज्ञानेश कुमार को अरेस्ट करना है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज कटिंग ऑफ पीपल जेन्युइन एलिजिबल पीपल फ्रॉम वोटर्स लिस्ट इट इज ए क्रिमिनल एक्ट.
6: The Narendra Modi government hit back at the opposition.
10: कांग्रेस देश की आजादी के लिए थी, लोक सेवक संघ बना दो, लेकिन स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो महात्मा गांधी की बात नहीं मानी. राहुल जी बापू जी के इस कथन को सिद्ध करके रहेंगे कि कांग्रेस समाप्त करो.
11: दे हैव ऑलरेडी गिवन कंप्लेंट. व्हाट इज द इंक्वायरी बाय आवर इलेक्शन कमीशन? ऑलरेडी इट प्रॉमिस्ड दैट वी आर गोइंग टू इंक्वायरी.
6: The protests on Gandhi Jayanti are just the start of the opposition's agitation planned for the removal of Gyanesh Kumar, with many more stirs across the nation in the pipeline. The government on the other side is in no mood to budge and is defending CEC Gyanesh Kumar. With Piyush Mishra, Himanshu Mishra and Shreya Chatterjee, Bureau Report, India Today.
1: All right, so that's what's been happening when it comes to protests here on 2nd of October. But another important story has been the one on everybody's mind, and this is an international one, but the big Indian pilot as the central hero story. A routine flight from Dubai to Tel Aviv suddenly turned into a terrifying flight for survival at 34,000 feet. At 10:52 a.m. IST, the Fly Dubai flight, a Boeing 737 MAX 8, plunged more than 1,400 feet in just 30 seconds. At that 34,000 feet, the Indian captain was attacked by his Omami co-pilot. The injured captain managed to open the cockpit door, allowing others to restrain the attacker. All of this is to the credit of what he's been called now the hero, the Captain Smith Machar. Surviving a terrifying mid-air attack is now being hailed as courage and quick thinking during the crisis. Despite serious suffering injuries, Captain Smith pushed through the ordeal, regained access to the cockpit and helped bring the aircraft to safety. Now, that entire story has been doing the rounds. I'm sure you've seen it as well. And just this morning, we heard him for the first time in that conversation that he had with Prime Minister Modi. Listen in.
12: स्मित नमस्ते.
13: नमस्ते सर.
12: कैसे हो? अभी तबीयत कैसी है?
13: सर सब ठीक है सर, सब ठीक है.
12: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं.
13: यस सर.
12: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं. और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया, और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
13: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर्स हैं, और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफिसाइज कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा, मैं 17 साल से जहाज उड़ा रहा हूँ, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ, और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए, और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी, सऊदी में भी, यहाँ पे तो बल्कि इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर, मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को दर्द होता है, मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी कि आपके सामने रो रहा हूँ सर।
12: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
13: तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
12: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी, सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
13: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
12: सही बात है।
13: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से मेहनत करें।
12: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब जो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
13: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
12: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, एंड बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे, और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए।
1: And more updates coming in on this story. Senior advisor to the UAE president has referred to the hijacking attempt of the Fly Dubai aircraft as an act of terror. UAE presidential advisor labels the attempted hijacking of the Fly Dubai flight to Tel Aviv by the Omami co-pilot as terrorism, the first such designation by the Emirates, and praising the heroism of the Indian captain. He went on to make a statement, and I quote him here: "The Indian pilot by Fly Dubai, Smit Machar, deserves every bit of appreciation for embodying the meaning of courage and responsibility in the face of dangerous terrorism act and a potential disaster. His professionalism and moral sense in the darkest of circumstances makes him a true hero," said Anwar Gargash. Also, far from easy reduction of what happened, of the adoption and promotion of the conspiracy theories, vigilance and caution remains essential in confronting the risks of extremism and terrorism. Let me cut across to my colleague Pranay Upadhyay, who joins us for more details on the story. Pranay, the use of the word terrorism, how does that scale the entire incident now?
14: This clearly shows that no possibility is being ruled out right now, Sonal. And in fact, this statement has come at a very important time, because now both Captain Smit Machar as well as that his attacker, first officer and co-pilot, is also in the Emirati custody. And now Anwar Gargash, who is the presidential advisor, has come out with this statement where he has not only praised Captain Smit Machar, but he has also accused the act of the first officer and his co-pilot as act of terror. And in fact, Emirati authorities are now investigating the aircraft, investigating and analyzing the cockpit voice recorder, the flight data recorder. And besides these technical detail, all the antecedents are being checked, because this was not a single act. This had large ramifications. And that's why all aspects are being looked into by the Emirati authorities. And meanwhile, Saudi authorities and Israeli authorities are also looking into all the details pertaining to this very incident, and that is the reason that all the government authorities are taking it very seriously, and all possibility of this probe are being explored as per the Chicago Convention as far as the Hague Convention is concerned.
1: All right, Pranay there talking to us about how this scales the entire incident now. The use of the word extremism and terrorism there appearing in the statement by UAE. But let's give you a few more details about how the story really unfolded. A terrifying cockpit attack is now becoming a much bigger geopolitical story. As investigators probe the possible Iran connection here, both Washington and Jerusalem are raising questions over the co-pilot's alleged radicalization. And with tensions already running across West Asia, the incident is raising fears of another dangerous flashpoint.
15: A cockpit attack, a plunging aircraft, and a pilot fighting through serious injuries to save 174 lives. And now the flyaway horror is taking a new turn, with investigators probing the motive behind the attack. And a possible Iran connection being raised by U.S. and Israeli officials. U.S. President Donald Trump has said he's looking into reports of a possible Iranian link to the attacker and warned that if Tehran is found to be behind the attack, Iran would face a very strong U.S. response.
16: Has anybody briefed you about whether or not the pilot of the Fly Dubai plane is linked to Iran?
17: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer, based on what I'm hearing, is yes.
15: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alleged that the co-pilot underwent Islamic radicalization, while saying it is too early to conclude that Iran was involved.
18: 1 hour, 40 minutes.
19: And he calls out to the air crew, kill me, all right? So it's clear he was suicidal. That's not a question. It was clear he was going to down that plane. Oh, it's not clear, but it looks very likely that he was going to down the plane.
15: The incident is also triggering a security review in India. The Civil Aviation Ministry says it is examining the Fly Dubai episode and reviewing whether additional security measures are required. As part for wider upgrade, full body scanners are set to be introduced at 8 Indian airports in the first phase.
20: Hamare andar BCAS, DGCA aur MOCA hum hi milkar hi iske upar thoda aur charcha karenge, internally bhi charcha karke isko situation kya hua, kaise hua, iske upar abhi hamare operations kaise chal rahe hain, iske upar aur kya karna padega, zarur ek bar hum review karenge.
15: What began as a terrifying cockpit attack is now raising much bigger questions over the possible Iran connection, the wider regional tensions, and the risk of adding yet another flashpoint to an already volatile West Asia. The big question that remains, was this an isolated act or a part of a much bigger plot? Bureau Report, India Today.
1: All right, with that, we're going to wrap this bulletin. But before that, on the birth anniversary of Mahatma Gandhi, Prime Minister Modi paid his respects to Bapu and attended a prayer meeting at Gandhi's Smriti as well. We leave you with these visuals. Thanks for watching.

0: प्रणय जी, पहली बात तो शाम को यहाँ पर आपका प्रोटेस्ट होगा, लेकिन परमिशन आपको नहीं दी गई, आपने परमिशन मांगी थी, पुलिस से कुछ बातचीत हुई आपकी?
1: देखो, पिछले जुलाई के महीने में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे भारत के नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया था, जेंजीज और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, क्या तब परमिशन मांगी गई थी? और मुझे परमिशन के बारे में बात करना हो तो यहाँ पे पॉलिटिकल रैलीज होती है, उसको कैसे परमिशन मिलती है? और जो हम कर रहे हैं, हम हमारी हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इट्स दैट डिफिकल्ट।
0: सीजेपी की तरफ से किस तरीके से आयोजन होगा, कितने लोग आने की उम्मीद है?
1: देखिए, संख्या तो बहुत बड़ी है, भारत भर से लोग आएंगे और हमारे पास वॉलंटियर्स है जो क्राउड मैनेजमेंट में रहेंगे, एंट्री पॉइंट्स में रहेंगे और मुंबई पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, मुंबई पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है और उस माध्यम से हम ये पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल कंडक्ट करेंगे।

0: Co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape. But he had the sense to, amazing, to, in a way, he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. He was able to fall back and get the door open and scream. It seems, I mean, I can relate the story, but you're better off getting it from him. But by this time, I guess they have a lot of fake stories out there, and, you know, you never know what's happening. But I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape, but he had the sense to, amazing, to, in a way, he was a hero.
1: You may remember one of the celebrities who exercised for 2 hours and suddenly collapsed and died. And everybody said, "Wo to itna, you know, exercise karta tha, wo to 2 saal se kya uski muscles hi kya tha." And he was only 42, etc. And nobody knew that he actually smoked 15 cigarettes a day. And smokers, me to, I get this regularly. Absolutely perfect light. 45-year-old kehta hai ki ji, main to sab kuch theek karta hu. Khana dekhiye mera Mediterranean diet. Main to isko chhod diya, wo chhod diya. Looking absolutely fit. Main 15 kilometer jog karta hu. Acha, smoke karte ho? हाँ, स्मोक तो करता हूँ. अच्छा, आई एम स्केर्ड अबाउट यू कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो 15 किलोमीटर. यूं होगा, एक दिन सडनली क्लॉट आएगा एंड यू विल कोलैप्स एंड डाई. व्हाई यू स्मोकिंग? दिस इज द सैडनेस ऑफ इट, बिकॉज स्मोकर्स हैव दैट सडन कार्डियक डेथ. वो जो हम देख रहे हैं ना, कहीं डांस करते हुए कोलैप्स कर गए, दे कुड हैव एक्चुअली बीन स्मोकर्स, बिकॉज स्मोकिंग इटसेल्फ प्रेसिपिटेट्स क्लॉटिंग इन द इवन नॉर्मल आर्टरीज. 25-25 साल के लड़के हैवी स्मोकिंग के बाद मैंने देखे हार्ट अटैक होते हुए, जिनकी आर्टरीज फुल ऑफ क्लॉट होती है, ब्लॉकेज तो होती भी नहीं है. एंड देन वी एक्चुअली ऑन द एंजियोप्लास्टी टेबल आर एक्सट्रैक्टिंग दोज क्लॉट्स, ट्राइंग टू एक्चुअली प्रिवेंट द हार्ट डैमेज. और वो हार्ट डैमेज, आई गॉट सो मेनी पेशेंट्स, एटलीस्ट आई मस्ट हैव 1,000 यंग पीपल बिटवीन द एज ऑफ 20 to 25 और इवन मोर, जिनके हार्ट अटैक्स हुए सिर्फ स्मोकिंग की वजह से. वो बोले हार्ट अटैक्स बड़े डेंजरस होते हैं, बिकॉज दे हैपनिंग ऑन नॉर्मल आर्टरीज. सडनली आर्टरी बंद हो गई. एवरी हार्ट अटैक इज शॉर्टनिंग अ लाइफ. सो समटाइम्स फील बैड फॉर दैट 20-25 ईयर ओल्ड जिसको हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वो जो 80-90 साल की लाइफ होनी थी, मे बी 100 साल की, गेट्स कट डाउन टू 50 years, 60 years only.

मुंबई के शिवाजी पार्क में आज सीजेपी का प्रोटेस्ट होना है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने काफी एहतियातन कदम उठाए हैं। उन्हीं में से एक है कि ये बैरिकेड आप देख सकते हैं जो शिवाजी पार्क ग्राउंड है, जहां पर कई राजनीतिक रैलियां होती हैं, कई सभाएं होती हैं, इस ग्राउंड के जितने भी एग्जिट्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि ज्यादा भीड़ जब शाम को प्रोटेस्ट हो तब ग्राउंड में ना जा पाए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रखी जाए। साथ ही मुंबई पुलिस यहां पर बड़ी तादाद में मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस यहां पर आप देख सकते हैं अभी से तैनात है। शाम को कई रूट्स के यहां पर डाइवर्जन देखने को मिलेंगे, जिसके एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस द्वारा बहुत ही जल्द जारी की जा सकती है। सीजेपी का प्रोटेस्ट यहां पर होना है और जो उनके प्रोटेस्टर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। साथ ही कई स्टूडेंट्स फोरम हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए जो है सीजेपी ऐसे बैनर्स जो है वो शिवाजी पार्क में जगह जगह पर लगा रही है, जिसको स्कैन करके उनकी पार्टी सीजेपी को ज्वाइन किया जा सकता है। और कई जगहों पर ऐसे बैनर्स जो हैं यहां पर वो लगाए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस द्वारा अब तक जो परमिशन है वो नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो प्रोटेस्ट है वो यहां पर होगा और ये प्रोटेस्ट की एक तरीके से शुरुआत होगी। इसके बाद ये प्रोटेस्ट देश के अन्य राज्यों में जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर और अपनी अन्य मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें अभिजीत दीप के जो सीजेपी के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो खुद इसमें शामिल होंगे और उनके साथ हजारों की तादाद में सीजेपी समर्थक जो हैं वो यहां पर शाम को प्रोटेस्ट करेंगे।

0: that came in Hangzhou was also won by the Chinese women's team. So the Indian women's team were up against it. But as it turns out, I'll have to credit two things for the Indian team. One, when they went up 1-0 with Lal Ramaswamy scoring that one goal. And then a special mention to the Indian goalkeeper, Savita. We call her the wall of India. And she saved a penalty stroke. I mean, the chances of saving a penalty stroke are no more than 10%. She saves that penalty stroke, otherwise it could have been 1-1. And after saving that penalty stroke, kudos to the Indian defensive setup. They bided their time, did not allow China to score that second goal or their first goal and then level things. That could have been very, very different.
1: Amazing, amazing feat this. And we've got the pictures on our screens also of the girls celebrating right after bagging gold. It's a tough one for India, there's no doubt about it. But a 1-0 managed to win this particular game. Let's cut across to reactions from the family.
2: इसका को मैंने बचपन से खेलते हुए देखा है और इसका को हॉकी में आगे ले जाने के लिए सर पहला हाथ उसकी माँ का है जब ये 5-6 साल की थी छोटी सी स्टिक पकड़ के इसने दर्पण स्टेडियम एक मिनी स्टेडियम है वहाँ पर हॉकी प्रैक्टिस होती थी तो ये और इसका भाई दोनों जाते थे लेकिन इसके भाई ने चोट खा के डर गई लेकिन इसको बहुत चोट लगी लेकिन इसने चोट से डरी नहीं और लगातार बहुत अच्छा खेलती रही उस टाइम इसके पास ठीक से जूते भी नहीं थे हॉकी स्टिक भी नहीं थी कैसे भी इसको हॉकी स्टिक वगैरह इसको पूरा किट दिलवाया गया फिर ये क्वालिफाई कर गई अकेडमी के लिए ग्वालियर में हॉकी अकेडमी है उसके लिए क्वालिफाई कर गई फिर वहाँ पर इसने बहुत अच्छी जूनियर में करीब 8-10 बार विदेश में खेलने गई थी जूनियर टीम से ये और जूनियर से फिर इसका सीनियर में पिछले 4-5 साल से सिलेक्शन हो गया तो सीनियर टीम में बहुत अच्छा खेल रही है क्लब हॉकी भी खेल रही है ये उड़ीसा बारियर से भी इसने हॉकी खेली थी फिर रांची से भी इसने हॉकी खेली थी रांची की टीम से हॉकी लीग यहाँ हुई थी जो उसमें बहुत अच्छा खेल रही पिछले 4-5 से बहुत अच्छी हॉकी खेल रही थी और रही बात आज का मैच तो गजब मैच है ये 1982 दिल्ली एशियाड में कभी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था उससे 44 साल हो गए आज वो दिन फिर दोहराया आज फिर गोल्ड मेडल मिला है बहुत खुशी हो रही है टीम इंडिया बहुत अच्छी खेली चाइना भी अच्छा खेली थी लेकिन इंडिया जब डिफेंस पर आई तो इतना बढ़िया डिफेंस पर खेली कि उसने 5 पेनल्टी कॉर्नर बचाए और पेनल्टी स्ट्रोक सेव किया वो उसके लिए मैं बहुत अच्छा बोलूँगा उस जो गोलकीपर थी हमारी सविता पूनिया उसने बहुत बढ़िया शेप किया पेनल्टी कॉर्नर मैं हॉकी प्लेयर रहा हूँ अपने स्कूल लेवल पर खेलता था ब्रजराज सिंह भदौरिया हमारे कोच हुआ करते थे स्पोर्ट्स के तो मैं स्कूल से अपना मध्य प्रदेश खेलने गया था फिर मैं यूनिवर्सिटी में चला जीवाजी एमजीएस कॉलेज से जीवाजी यूनिवर्सिटी खेलने आता था हॉकी खेलने के लिए उसके बाद मैं आर्मी में भर्ती हो गया तो आर्मी में मैं सर्विसेज में हॉकी खेलता रहा हूँ हॉकी बहुत टफ गेम होता है बड़ी स्टेमिना चाहिए होती है और हॉकी के लिए प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए होती है डेडिकेशन चाहिए होता है हॉकी के लिए तो आज मैंने देखा बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि अपने एशियन गेम में गोल्ड जीत के हमारी टीम अगले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है मुझे बहुत खुशी हो रही है वेल डन टीम इंडिया वेल डन मेरी भांजी बुलबुल
1: Okay, the family all smiles, they're celebrating. And as we get you those pictures, you see some of the footage really of the girls celebrating right after beating China and clinching that historic goal. What makes this such a huge moment for women's hockey, Nikhil?
0: Well, for starters, Akshita, we missed out on playing the Olympic Games last time around in the women's draw. So you had a scenario in Paris where we celebrated the men's team bringing a bronze medal back. The women's team won there. They weren't invited to that party. They didn't even qualify. They weren't invited to that particular party. Guess what? Now, becoming Asian champions, they've booked their ticket for LA 2028. So at least, for starters, you have them there. Because I go back to the Olympics that you had in Tokyo. The Indian women's team came very close to winning an Olympic medal. They had a heartbreaking encounter there towards the end and finished at the fourth spot. Missed out on the medal. There also they saw their male counterpart winning a bronze medal. Next time around didn't qualify. For starters, they've got a ticket now for LA 2028, yeah. Which is outstanding. And then on top of that, to beat China. I mean, we forget, we look at the traditional powerhouses. But in women's hockey, China has been the Asian powerhouse. I mean, we're going back to 1982 to see when Indian women's team won a gold medal.
1: Okay.
0: It's been a very, very long time.
1: We've got Mir Ranjan Negi, former hockey coach. You want to take that away, Nikhil?
0: Yes, I mean, Mir Ranjan Negi, I don't

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

सर मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एडवाइजर हैं और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफर एजाई कर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने घाव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा मैं 17 साल से ज्यादा दौड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ, और मुझे पता चलता है यहाँ बन करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर ले दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल लिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सबकी भी उतनी उतनी उसमें उसमें रोल था, जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, पर एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो पढ़ के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए।

0: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
1: चलिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा, कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, उतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात है।
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
2: सभी दिल्ली के नो फ्यूल न्यू नो पीयूसीसी नो फ्यूल का जो हमारा फार्मूला है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। उस अभियान को एक मिशन मोड में लागू किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली में सभी 500 एएनपीआर युक्त पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के खिलाफ भी सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अक्टूबर में इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और नंबर में पीयूसीसी केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह से नवंबर तक हम इन पीयूसीसी को भी बेटर अपग्रेड करना चाहते हैं।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कहाँ होंगे?
1: मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज, दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था। इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है। क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात है।
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
0: आपको पता नहीं होगा, लोग सावर कुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है। और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई। और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
1: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है। एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
0: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपकी बहुत केयर की। मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं। लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ी गुजराती में बात कर ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता?
1: बोले सर,
0: बेहू जाए गुजराती बोले छे। अच्छा, तो बाळको मळवाम થઈ ગયું? બાળકોને ડોક્ટર એલાવ કર્યા મળવા માટે?
1: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ એ આ ઉપર જોઈ નહીં ડરી ગઈ।
0: અચ્છા અચ્છા,
1: એ થોડી એ મારા થી બહુ ક્લોઝ છે। અને મારા નાના સન 2 વર્ષ પછી એને નથી
0: એલાવ। નહીં, હમણાં તો સાચવું જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે।
1: યસ,
0: કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં, બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે। ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાવ, પછી આપણે મળીએ છીએ। ગોડ બ્લેસ યુ।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

सभी दिल्ली के नो फ्यूल नो पीयूसीसी नो फ्यूल का जो हमारा फार्मूला है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। उस अभियान को एक मिशन मोड में लागू किया जाएगा जिसके लिए दिल्ली में सभी 500 एएनपीआर युक्त पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के खिलाफ भी सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अक्टूबर में इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और नंबर में पीयूसीसी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह से नवंबर तक हम इन पीयूसीसी को भी बेटर अपग्रेड करना चाहते हैं।

पावर्ड बाय ग्रीन प्लाय, हर जरूरत का रिप्लाई। को पावर्ड बाय वेका, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग यूपीवीसी विंडो।

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल
1: वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

सभी दिल्ली के नो फ्यूल नो पीयूसीसी नो फ्यूल का जो हमारा फार्मूला है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। उस अभियान को एक मिशन मोड में लागू किया जाएगा जिसके लिए दिल्ली में सभी 500 एएनपीआर युक्त पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के खिलाफ भी सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। अक्टूबर में इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और नंबर में पीयूसीसी केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह से नवंबर तक हम इन पीयूसीसी को भी बेटर अपग्रेड करना चाहते हैं।

0: सीजीपी का प्रोटेस्ट शिवाजी पार्क में होना है और उसको लेकर तैयारियां जो है वो जोर शोर से यहां पर देखने को मिल रही हैं। हजारों की तादाद में यहां पर सीजीपी प्रोटेस्टर्स आने वाले हैं और सबसे एक अपील की गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं होगा, सबके हाथों में तिरंगा होगा। आप देख सकते हैं तिरंगा वहां पर डंडे में जो है वो लगाया जा रहा है। यही तिरंगा सबके हाथों में होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बैनर नहीं होगा, ना ही कोई झंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा। जो भारत देश का तिरंगा है वो सबके हाथों में होगा। और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में यहां पर लोग आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए भी यहां पर एहतियात बरती गई है। यहां पर एक मेडिकल कैंप जो है वो सेटअप किया गया है। सर आपका नाम क्या और क्या क्या यहाँ पर है इस मेडिकल कैंप में, क्या सुविधा है?
1: मेरा नाम डॉक्टर पठान है। अभी जो भी फर्स्ट एड की जो जरूरत पड़ेगी यहाँ पे वो और पेन किलर्स वगैरह हमने रखे हैं, अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे तैयारी की हुई है।
0: और कितने लोगों के आने की उम्मीद है और क्या और भी सेटअप यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मेडिकल सेटअप और भी जगहों?
1: यहाँ पे हम लोग 2 से 3 कैंप लगाने वाले मेडिकल के, और काफी जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल से केम हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स है उन्होंने भी कमिटमेंट किया है कि हम लोग भी यहाँ पे आएंगे, और अप्रोक्सीमेटली हम लोग ज्यादा नहीं कम से कम 10,000 लोग आने की उम्मीद रखते हैं।
0: और एम्बुलेंस वगैरह भी स्टैंड बाय पे रखी गई है या इस तरीके के कुछ और तैयारी
1: है? नहीं, यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल है, अभी यहाँ पे सबसे करीब जो हिंदुजा हॉस्पिटल है या केम हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगा कोई इमरजेंसी रहेंगे तो हम लोग वहाँ पे पेशेंट्स भेजेंगे, एम्बुलेंस वगैरह सब यहाँ पे रेडी रहेंगे।

0: UAE presidential advisor. He praised Captain Smith Machar for his heroic efforts. He then went on to say that this was courage in the face of a dangerous terrorist act. And it was Captain Smith Machar who averted a potential disaster. He also urged everyone to maintain vigilance and caution in confronting the risk of extremism and terrorism. Earlier, the UAE ordered the formation of an investigation team to probe the incident, including any possible connection to terrorist activity or intent involving Fly Dubai, Flight FZ1073. But let me now talk a little more about the hero of this flight. The hero of FZ1073, Captain Smith Machar. He, of course, is recovering from his injuries. He suffered serious injuries as he attempted to stop the co-pilot from crashing the aircraft. He is presently undergoing treatment in Abu Dhabi. Prime Minister Narendra Modi had a long video conversation with him, and it was quite an emotional conversation. Speaking to Prime Minister Narendra Modi from his hospital bed, Captain Smith Machar recounted how he fought through his injuries and managed to open the cockpit door as the aircraft was rapidly losing altitude. Now, this is where this conversation becomes extremely personal. The captain told Prime Minister Narendra Modi he realized he had to get up. He fought against all odds because he realized if he did not act, passengers would lose their lives. He said after he opened the door, passengers and crew entered the cockpit and helped bring the situation under control. But also very interesting on this personal note, Captain Smith revealed what gave him strength throughout these very critical moments was his recitation of the Hanuman Chalisa. He continued reciting the Hanuman Chalisa and that kept him going. The Prime Minister spoke of the sanskars Captain Smith's parents had given to him. The Prime Minister spoke of conversations that he had with Captain Smith's parents and his wife. The Prime Minister praised Captain Courage or Captain Smith's courage, his presence of mind, his composure, saying his actions saved many lives. The Prime Minister told him that the entire country was praying for his speedy recovery. There were prayers that were held at the Somnath Temple. There were prayers that were held at the Kashi Vishwanath Temple, the Mahamrityunjay Jap that was happening. And during this conversation, Captain Smith became emotional. He broke down at times. He also described Prime Minister Narendra Modi as his biggest idol. He thanked the Prime Minister for reaching out. But before I get you more on that story, let's listen in to that heartwarming conversation between the Prime Minister and Captain Smith Machar.
1: Smith, namaste.
2: Namaste, sir.
1: कैसे हो अभी तबीयत कैसी है
2: सर सब ठीक है सर सब ठीक है
1: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं
2: yes,
1: आपकी हिम्मत ने आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं जान बचाने वाले लोग हैं और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला गीता बहन से बात की सोनल बहन से बात की जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मिथ को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मिथ, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे। उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एंजर में 17 साल से ज्यादा दौड़ा रहा हूँ। मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है यहाँ बंद करके भी कि चार्ज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है। और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मर दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बल्कि इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था। अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था। अब हो गया सर, सॉरी क्या आपके सामने रो रहा हूँ सर।
1: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं हो गए तो कहां होंगे।
2: मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा उन्होंने। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
2: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात है।
2: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावर कुमला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। अब शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
2: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे, और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए। चलिए, जय श्री कृष्ण। मेरा थोड़ी गुजराती में बात कर ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता? गुजराती बोले छे? तो बाळको मळवाનું થઈ ગયું, બાળકોને ડોક્ટર એલાઉ કર્યા મળવા માટે?
2: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ એ આ ઉપર જોઈ નહીં ડરી કે
1: અચ્છા અચ્છા
2: એ થોડી ઇમારતી બહુ ક્લોઝ છે અને મારા નાના સર બે વર્ષ પછી મેં નથી એલાઉ
1: કર્યું નહીં હમણાં તો સાચવું જોઈએ પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે કારણ કે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન ને બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે
2: બસ બસ એકદમ એમાં જ રહે છે
1: સર ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાવ પછી આપણે મળીએ છીએ ગોડ બ્લેસ યુ
0: Endearing conversation, Jai Shri Krishna, Jai Hind is what that conversation ended with. There's more breaking news coming in. Israel is moving forward at a rapid pace with these investigations. Israel now wants to question the Omani co-pilot. Media reports in Israel say Israeli officials want the UAE to give them access to the Omani co-pilot. Israel is already talking of a possible link to Iran. They want to figure out if there was a larger conspiracy, a 9/11 kind of a conspiracy. They want more details. They want to question the Omani co-pilot. I will get you more on this story because right now the conversation is about courage under fire that saved many lives.

0: मतलब कि आपको लगता है नेतृत्व पर प्रेशर बनाया गया और प्रेशर के चलते जिस तरह से सचिन पायलट नए इंचार्ज आए और उसके बाद ये बदलाव हुआ है, तो 10 जनपद पर भी प्रेशर था, चाहे वो एक अलग प्रेशर ग्रुप का पंजाब में, जिसकी वजह से आपको बदला गया?
1: नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है मौसमी जी कि प्रेशर कोई था या नहीं था, लेकिन हाँ सचिन पायलट जी 5 तारीख को हमारे इंचार्ज बने थे और आज 2 तारीख हो गई है, तकरीबन 1 महीना 2 घंटे के लिए वो प्रदेश आए थे एजिटेशन में और उसके बाद निरंतर लोगों को यहाँ मिल रहे थे और उनको लगा होगा शायद कि बदलाव की जरूरत है, तो मेरे को लगता उनका कोई फीडबैक रहा होगा, इस मेरे को लगता है, इसके बारे में कोई जानकारी पुष्टि तो मेरे पास नहीं है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: UAE presidential advisor. He praised Captain Smith Machar for his heroic efforts. He then went on to say that this was courage in the face of a dangerous terrorist act. And it was Captain Smith Machar who averted a potential disaster. He also urged everyone to maintain vigilance and caution in confronting the risk of extremism and terrorism. Earlier, the UAE ordered the formation of an investigation team to probe the incident, including any possible connection to terrorist activity or intent involving Fly Dubai, Flight FZ1073. But let me now talk a little more about the hero of this flight. The hero of FZ1073, Captain Smith Machar. He, of course, is recovering from his injuries. He suffered serious injuries as he attempted to stop the co-pilot from crashing the aircraft. He is presently undergoing treatment in Abu Dhabi. Prime Minister Narendra Modi had a long video conversation with him, and it was quite an emotional conversation. Speaking to Prime Minister Narendra Modi from his hospital bed, Captain Smith Machar recounted how he fought through his injuries and managed to open the cockpit door as the aircraft was rapidly losing altitude. Now, this is where this conversation becomes extremely personal. The captain told Prime Minister Narendra Modi he realized he had to get up. He fought against all odds because he realized if he did not act, passengers would lose their lives. He said after he opened the door, passengers and crew entered the cockpit and helped bring the situation under control. But also very interesting on this personal note, Captain Smith revealed what gave him strength throughout these very critical moments was his recitation of the Hanuman Chalisa. He continued reciting the Hanuman Chalisa and that kept him going. The Prime Minister spoke of the sanskars Captain Smith's parents had given to him. The Prime Minister spoke of conversations that he had with Captain Smith's parents and his wife. The Prime Minister praised Captain Courage or Captain Smith's courage, his presence of mind, his composure, saying his actions saved many lives. The Prime Minister told him that the entire country was praying for his speedy recovery. There were prayers that were held at the Somnath Temple. There were prayers that were held at the Kashi Vishwanath Temple, the Mahamrityunjay Jap that was happening. And during this conversation, Captain Smith became emotional. He broke down at times. He also described Prime Minister Narendra Modi as his biggest idol. He thanked the Prime Minister for reaching out. But before I get you more on that story, let's listen in to that heartwarming conversation between the Prime Minister and Captain Smith Machar.
1: Smith, namaste.
2: Namaste, sir.
1: कैसे हो अभी तबीयत कैसी है
2: सर सब ठीक है सर सब ठीक है
1: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं
2: यस सर
1: आपकी हिम्मत ने आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है जान बचाने वाले लोग और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला गीता बहन से बात की सोनल बहन से बात की जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफिसाई कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से जा उड़ा रहा, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आँख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एक राह नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर ले दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल लिया सर, बाकी सब आ गए और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सावधी में भी यहाँ पे तो पढ़ के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी कि आपके सामने लो रहा हूँ सर।
1: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
2: तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
2: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात है।
2: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावर कुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं, भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
2: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं इसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, एंड बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे, और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए जय श्री कृष्ण, मेरा थोड़ी गुजराती में बात करे ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता? गुजराती बोले छे। अच्छा, તો બાળકો મળવાનું થઈ ગયું? બાળકો ને ડોક્ટર એલાવ કર્યા મળવા માટે?
2: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ આ બધું જોઈ નહીં ડરી ગઈ.
1: અચ્છા અચ્છા,
2: એ થોડી ઈમારતી બહુ ક્લોઝ છે. હા, અને મારા નાના સર બે વર્ષ પછી એને નથી
1: એલાવ. નહીં, હમણાં તો સાચવું જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે. કાલે આટલી સ્વસ્થતા છે મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ, અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહી, બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે. ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાવ પછી આપણે મળીએ છીએ. ગોડ બ્લેસ યુ.
0: Endearing conversation, Jai Shri Krishna, Jai Hind is what that conversation ended with. There's more breaking news coming in. Israel is moving forward at a rapid pace with these investigations. Israel now wants to question the Omani co-pilot. Media reports in Israel say Israeli officials want the UAE to give them access to the Omani co-pilot. Israel is already talking of a possible link to Iran. They want to figure out if there was a larger conspiracy, a 9/11 kind of a conspiracy. They want more details. They want to question the Omani co-pilot. I will get you more on this story, because right now the conversation is about courage under fire that saved many lives and is being recognized across the world. Captain Smit Machar today is a very familiar name. Of course, in India, everyone knows this name. But even in Israel and United States, Arab Emirates and perhaps United States of America, across the world, this is a very well-known name. But it's the actions of the co-pilot and the new threat in the sky that's causing global alarm and concern. Joining me on this India First special broadcast is Or Sheked. He's a U.S. correspondent at Israel Hayom, deputy director at the Jewish Library. Wing Commander Sharad Panikkar is former commander of a Boeing 787 Dreamliner. Air India also joins us on this broadcast. Or Sheked, welcome. Israel's prime minister used words to the effect terrorist for the Omani co-pilot and indicated that he underwent radicalization. Sir, are there any details that are available in Israel for to arrive at such an assessment?
3: Good evening, Mr. Sawant, and good morning from New York. Thank you for having me. So as of now, we really rely on some of the statements that were made by Prime Minister Netanyahu and President Trump in an interview that was conducted on CNN and another interview that was conducted on Fox with Prime Minister Netanyahu. He basically revealed that the Omani co-pilot was indoctrinated. There are reports that pro-Palestinian materials and anti-Semitic content

0: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे? आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था। इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है। क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात।
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
2: آٹو حضرات و خواتین، ذرا مرائدہ فرمائیں تو خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، خوشحال فیملی کا نسخہ جان لیجئے، اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے۔ حضرات، یہاں اپنی پر غور فرمایا جائے ہاں تو اپنی ہی بیگم کو دل کا سمویدھان مان لیجئے۔ اور میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے، میں جو کرتا ہوں وہی آپ بھی کام کیجئے۔ جھجکیے مت، خود کو بی بی کا غلام کیجئے، اور اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے۔ غور فرمائیے، اسی سے ختم ہو جائے گی یہ جو بھی چل رہی ہے۔ یو سی سی پر تکرار، گر صبح، دوپہر، شام آئی لو یو بول کر کرو گے محبت کا اظہار، یو سی سی آداب جو ہے۔

0: स्मित नमस्ते।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हो? अभी तबीयत कैसी है?
1: सर सब ठीक है, सर सब ठीक।
0: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं। आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया। और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।

0: UAE presidential advisor. He praised Captain Smith Machar for his heroic efforts. He then went on to say that this was courage in the face of a dangerous terrorist act. And it was Captain Smith Machar who averted a potential disaster. He also urged everyone to maintain vigilance and caution in confronting the risk of extremism and terrorism. Earlier, the UAE ordered the formation of an investigation team to probe the incident, including any possible connection to terrorist activity or intent involving Fly Dubai, Flight FZ1073. But let me now talk a little more about the hero of this flight. The hero of FZ1073, Captain Smith Machar. He, of course, is recovering from his injuries. He suffered serious injuries as he attempted to stop the co-pilot from crashing the aircraft. He is presently undergoing treatment in Abu Dhabi. Prime Minister Narendra Modi had a long video conversation with him, and it was quite an emotional conversation. Speaking to Prime Minister Narendra Modi from his hospital bed, Captain Smith Machar recounted how he fought through his injuries and managed to open the cockpit door as the aircraft was rapidly losing altitude. Now, this is where this conversation becomes extremely personal. The captain told Prime Minister Narendra Modi he realized he had to get up. He fought against all odds because he realized if he did not act, passengers would lose their lives. He said after he opened the door, passengers and crew entered the cockpit and helped bring the situation under control. But also very interesting on this personal note, Captain Smith revealed what gave him strength throughout these very critical moments was his recitation of the Hanuman Chalisa. He continued reciting the Hanuman Chalisa and that kept him going. The Prime Minister spoke of the sanskars Captain Smith's parents had given to him. The Prime Minister spoke of conversations that he had with Captain Smith's parents and his wife. The Prime Minister praised Captain Courage or Captain Smith's courage, his presence of mind, his composure, saying his actions saved many lives. The Prime Minister told him that the entire country was praying for his speedy recovery. There were prayers that were held at the Somnath Temple. There were prayers that were held at the Kashi Vishwanath Temple, the Mahamrityunjay Jap that was happening. And during this conversation, Captain Smith became emotional. He broke down at times. He also described Prime Minister Narendra Modi as his biggest idol. He thanked the Prime Minister for reaching out. But before I get you more on that story, let's listen in to that heartwarming conversation between the Prime Minister and Captain Smith Machar.
1: Smith, namaste.
2: Namaste, sir.
1: कैसे हो अभी तबीयत कैसी है
2: सर सब ठीक है सर सब ठीक है
1: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं
2: yes, sir.
1: आपकी हिम्मत ने आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं जान बचाने वाले लोग हैं और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला गीता बहन से बात की सोनल बहन से बात की जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मिथ को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मिथ, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी अफसाई कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं 17 साल से ज्यादा उड़ा रहा, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी ये चार्ज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आगे और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मरने दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो पढ़ के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। एंड मैं सर आई एम जस्ट मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर। सॉरी कि आपके सामने रो रहा हूं सर।
1: स्मिथ, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे।
2: तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा पूर्ण। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोनल बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
2: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात।
2: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावर कुमला में भी, वढ़वान में भी, सब जो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं, भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। अब शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप भी एक पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने।
2: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे, और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए। चलिए जय श्री कृष्ण, मेरा थोड़ा गुजराती में बात करी ली। बॉबी जेवा गुजराती बोले छे नहीं बोलता? गुजराती बोले छे। अच्छा, तो बाळको मळवाम થઈ ગયું, બાળકો ને ડોક્ટર એલાવ કર્યા મળવા માટે?
2: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ આ ઉપર જોઈ નહીં દીધી કે
1: અચ્છા અચ્છા
2: એ થોડી ઈમારતી બહુ ક્લોઝ છે અને મારા નાના સર બે વર્ષ પછી મેં નથી એલાવ
1: કર્યો, નહીં હમણાં તો સાચવું જ જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે, કાલે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં, બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે,
2: બસ બસ એકદમ એમ જ રહે છે સર।
1: ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાવ પછી આપણે મળીએ છીએ, ગોડ બ્લેસ યુ।
0: Endearing conversation, Jai Shri Krishna, Jai Hind is what that conversation ended with. There's more breaking news coming in. Israel is moving forward at a rapid pace with these investigations. Israel now wants to question the Omani co-pilot. Media reports in Israel say Israeli officials want the UAE to give them access to the Omani co-pilot. Israel is already talking of a possible link to Iran. They want to figure out if there was a larger conspiracy, a 9/11 kind of a conspiracy. They want more details. They want to question the Omani co-pilot. I will get you more on this story, because right now the conversation is about courage under fire that saved many lives and is being recognized across the world. Captain Smit Machar today is a very familiar name. Of course, in India, everyone knows this name. But even in Israel and United States, Arab Emirates and perhaps United States of America, across the world, this is a very well-known name. But it's the actions of the co-pilot and the new threat in the sky that's causing global alarm and concern. Joining me on this India First special broadcast is Or Sheked. He's a U.S. correspondent at Israel Hayom, deputy director at the Jewish Library. Wing Commander Sharad Panikkar is former commander of a Boeing 787 Dreamliner. Air India also joins us on this broadcast. Or Sheked, welcome. Israel's Prime Minister used words to the effect terrorist for the Omani co-pilot and indicated that he underwent radicalization. Sir, are there any details that are available in Israel to arrive at such an assessment?
3: Good evening, Mr. Sawant, and good morning from New York. Thank you for having me. So as of now, we really rely on some of the statements that were made by Prime Minister Netanyahu and President Trump in an interview that was conducted on CNN and another interview that was conducted on Fox with Prime Minister Netanyahu. He basically revealed that the Omani co-pilot was indoctrinated. There are reports that pro-Palestinian materials and anti-Semitic content was found in, you know, in his bag and by his posts on social media. So, you know, when you connect all of these dots, it's fair to say that to the very least, this was a terrorist attack. Israel, the UAE and Saudi Arabia, I believe, recognize it to that effect, even though Western outlets are a little bit more hesitant in declaring so. But it is very clear that there was malice intentions there. The fact that he disseminated all of this anti-Semitic propaganda that the Jews need to be killed and so forth is a very clear indication that this was a terrorist attack. Now, the question remains whether this was a lone act or whether it's connected to Iran or any other hostile foreign entity. President Trump yesterday in an interview indicated that based on his assessment, Iran was involved with this, but there is no clear evidence that was presented.
0: Fair enough. Wing Commander Panikkar, even the United Arab Emirates is calling it terrorist action, talking about beware terrorist activities or extremism. So far, the cockpit was considered safe if hijackers don't break in. Post 9/11, steps were taken. But now if the threat is inside the cockpit, sir, aren't all bets off? Should this prove, you know, should this be proven as a co-pilot was a terrorist, or whether acting alone as a lone wolf or part of a wider conspiracy? In fact, sir, any aircraft could now be seen as a potential missile.
4: Good evening, Gaurav. Good evening, viewers. Thank you for having me on the show.